0: एडिंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? आई नो मुझे थोड़ी सी देर हो गई. आज ना 75 से आई वॉज ड्राइविंग ऑल द वे फ्रॉम डालस, नॉर्थ डालस से, प्रेस्टन हॉलो से, एंड आई टुक 75 टू रीच हियर इन मिकिनी. और वहाँ पे ना इतना बड़ा एक्सीडेंट हो रखा था, पांच पांच छः छः गाड़ियाँ का एक्सीडेंट वन आफ्टर द अदर, एंड प्लस कॉप कार. सो इट वॉज लाइक अ रियली बिग ट्रैफिक. सो इफ यू आर ड्राइविंग ऑन दैट रोड, गाइज जस्ट बी केयरफुल बिकॉज यू डोंट नो वट्स हैपनिंग ऑन द रोड दीज डेज. मुझे तो आजकल लग रहा है सभी के एक्सीडेंट हो रहे हैं. थोड़ा ध्यान से चलाओ. कुछ लोग, कुछ अजीब सी एनर्जी चल रही है. वीनस इज इन रेट्रोग्रेड. मर्क्यूरी तो नहीं पता, इस बार वीनस इज इन रेट्रोग्रेड. तो इसीलिए दिस ट्रैफिक अपडेट इज़ ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा. अगर आप इसी तरह से गाड़ी के एक्सीडेंट में फंस जाते हैं एंड यू हैव सम काइंड ऑफ एन इंजरी, देन यू नीड टू कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा. ही इज़ अ पर्सनल इंजरी अटोर्नी एंड यू पे नथिंग अनलेस ही एक्चुअली विन्स. कॉल 4693005046 और विजिट अटर्नी ओमर डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स. तो गाइज विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड बिकॉज आई हैव बिन ऑन द रोड फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट लाइक 50 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग एंड आई एम आउट ऑफ इट टोटली. But it's okay. I'm here with you until 10 and we're gonna keep it up.

एंड गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई कौन है, दिस इज इपी द हिपी ओनली ऑन फनेशा रेडियो 104.9 FM एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो एन इवनिंग इन डैलस। एंड लाइक ऑलवेज मैं आपके पास लेकर आई हूँ बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग गाने, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग दैट यू मे और मे नॉट रिलेट टू, बट दैट्स ओके, वी आर नॉट गोना गेट इनटू दैट। And lots of other announcements too. Announcement की बात करते हुए guys, आगे बढ़ते हैं। AG Fintechs, this part of the show is brought to you by AG Fintechs. भाई, it is कल 15 September था। It was already the time to file your third quarter taxes. तो अगर आपने third quarter taxes नहीं भरे हैं अपने, you know, वो prepay नहीं करते taxes वाला, so then you should better get on with it, don't get late, okay? Yesterday was the last day to file your third quarter taxes, and if you need more help, call AG Fintechs because they can help you with trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping, business and advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com. So, you know, ये जो reminders जो मैं दे रही हूँ, मेरा काम है नहीं, ये AG Fintechs का काम है। तो अगर आपको इस तरह से help चाहिए, then they are the

0: डेट और विजिट agfintechs.com. तो ये जो रिमाइंडर्स जो मैं दे रही हूँ, मेरा काम है नहीं, ये एजी फिनटेक्स का काम है. तो अगर आपको इस तरह से हेल्प चाहिए, देन दे आर द पीपल हु यू शुड बी गेटिंग इन टच विद. आगे बढ़ते हुए गाइज, आपको पता है 8 o'clock इज आर गिव अवे एंड वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक इन अबाउट 5 seconds. सो स्टे ट्यून्ड, व्हेन यू कम बैक देन वी गोना प्लेस लॉट्स मोर अमेजिंग म्यूजिक.
1: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
2: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
3: होचो
4: होको
3: होचो
4: होको
3: होचो
4: इट्स होको. अरे बस भी करो यार.
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
4: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
6: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
9: Na sab aur price?
6: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
10: Main heroine hoon.
11: We need to talk.
12: Ab kya hua?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
6: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
14: अजी सुनते हो?
15: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
2: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
16: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: Ab to karna hi padega, madam.
19: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

Guys, today na I saw this most amazing video. Okay, so I like to watch a lot of podcasts. I'm sure you guys also like to do that. लेकिन कौन से पॉडकास्ट कैसे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ तो बहुत ही बकवास होते हैं, कुछ तो यू नो दे ब्रिंग पीपल ऑन जस्ट टू इंसल्ट देम. देर इज दिस वन अमेरिकन गाय हुज अ लाइक अ सो कॉल्ड फाइनेंशियल पॉडकास्ट, और वो लाता है कपल्स को जस्ट उसकी बदनामी करने के लिए. बिल्कुल एकदम ही इज लाइक रिपिंग दम अपार्ट, एंड नॉट इन अ नाइस वे. इट्स ह्यूमिलिएटिंग, इट्स इंसल्टिंग, एंड इट्स लाइक रेज बेट. इट्स दैट इज नॉट नाइस, बट ऑल्सो a lot of people like it because it's just entertaining. Because you know कई बार आप दूसरों के दुख देखकर खुद को खुशी होती है कि चलो मैं तो उस बोट में नहीं हूँ. सो he gets a lot of visitors and a lot of fan following just because of that. लेकिन that's not the financial podcast that I listen to this guy called Ramit Sethi, who's an Indian of course, very respectful, talks like he really knows his stuff. And very mature conversation, as if लग रहा है आपको एक financial expert के साथ नहीं, आप एक therapist के साथ बात कर रहे हो. लेकिन आज मैं उन दोनों के बारे में नहीं बोल रही हूँ. आज मैं बोल रही हूँ एक different podcast के बारे में that I came across. This one is called Relearn with Kash, and this is a 2-hour long YouTube video. If you get a chance to view this video, then you should check it out. The podcast name is Relearn with Kash or Cash, whatever, however you want to say, with a K-A-S-H. And he interviews basically this lady called Dr. Tamanna, who has this thing known as angel therapy. So, angel therapy, to khair, she said ki I had to coin that word because, you know, she feels that she was gifted with the powers of intuition and psychic abilities. And India mein jab wo thi, tab a lot of people would see that and look at it from a negative perspective ki aap bhi atmaon se baat karte ho and all that. And she was like, नहीं वैसा कुछ नहीं है. I was able to generally look at people and then tell them what's going on. Astrology भी नहीं करती है. She reads something known as the Akashic Charts, and it's very interesting. And I saw that entire podcast where basically she was like talking about karmic debts and आपके current life में, अगर आपके life में कुछ ऐसा चल रहा है that you can't somehow explain, either relationships not working out, या फिर आप एक किसी job में हो and you're constantly getting a toxic boss no matter whichever job you try, or like you constantly repeating the same relationship patterns over and over again, or like, you know, some family karma. And I saw this pura 2-hour video. The whole thing is so interesting. If you guys get a chance, definitely I would recommend you to check it out. कई बार कुछ चीज़ें होती है दैट वी कांट एक्सप्लेन वॉट इज हैपनिंग, एंड समटाइम्स यू जस्ट नीड एन अदर वर्ल्डली एक्सप्लेनेशन फॉर सर्टन थिंग्स विच यू नो जस्ट सीम आउट ऑफ योर कंट्रोल. सो या डेफिनेटली आई वुड टू चेक इट आउट. द नेक्स्ट सॉन्ग आई एम गोना प्ले फॉर यू इज लिग्गी बाय रितविज. अगर आपने ये वाला गाना नहीं सुना, ये भी यू शुड लिसन. मैंने तो बहुत बार ही बजाया है, बट द वीडियो इज स्पेशली इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर आपने मुसाफिर कैफे देखा है और उसमें जो मेन कैरेक्टर वाली जो लड़की है, शी इज एक्चुअली इन द वीडियो. शी इज डांसिंग अराउंड लाइक दिस न्यूली नई नवेली दुल्हन, एंड इट्स रियली क्यूट. सो डेफिनेटली चेक इट आउट.

0: तो गाइस, इन अदर न्यूज़, अगर आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, शादी, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई स्पेशल ओकेजन, बर्थडे पार्टी भी चलेगा अगर आपकी उस स्केल की बर्थडे पार्टी है, वेनेसा इवेंट्स को कॉल करिए बिकॉज दे हैव ग्रेट वेन्यूज, डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. कॉल हरी बसेरा एट 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. तो भाई, खुद से प्लानिंग जब करते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है. यू हैव टू कोऑर्डिनेट सो मेनी थिंग्स. जस्ट गिव इट टू समवन एल्स. इट्स ऑलवेज गुड टू डेलीगेट एंड यू कैन जस्ट कम ड्रेस्ड टू योर ओन ओकेजन एंड बी द शो स्टॉपर एट योर पार्टी. वाई डू यू वॉन्ट टू गो रन अराउंड एंड डू दिस, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, केटरर को कॉल करो, ये टू मच झंझट. गिव इट टू समवन एल्स. I will see you in 5 minutes. Have a good time.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: Documents या parcel भेजनी है?
6: हाँ.
5: घर relocate करनी है?
6: हाँ.
5: गाड़ी भी transport करना है?
6: हाँ भाई हाँ.
5: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
7: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
9: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया.
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
14: वही आवाज
6: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
15: तुमसे मिलके दिल का है.
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

0: एंड गाइज वी आर बैक और आज का हमारा गिव अवे इज नॉट वट वॉज इट वॉज येस्टरडे और ऑन मंडे. आज का हमारा गिव अवे, येस योर फेवरेट फन पिज्जा किचन इज बैक. तो गाइज खेले आज का गिव अवे, फन पिज्जा किचन का गिव अवे क्या है. वेल पहले तो फन पिज्जा किचन इज बैक विद द न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जाज विद फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. You can try the Fiesta Veggie, या फिर Fiery Pollo Loco, या फिर Seafood Packed, Senior Camarón and बहुत कुछ. Mucho Macho Pork and all of that. They have so many amazing flavors. So definitely go try out some of those. अगर आज का आप आंसर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, you can win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen and you can redeem it for anything on the menu. So it's pretty straightforward, pretty easy. Okay, so let's get into our game. So I'm going to tell you a story and then you have to tell me what is the name of the Bollywood movie. I'm only going to select one winner. So whoever is the first caller gets the prize. Okay, so let's play. Once upon a time, there was this one girl. She was very seedhi-saadhi, bholi-bhali, kind of nerdy looking girl, you know. And she was the daughter of this super wealthy rich man. And then uske baad kya hota hai? One of the guys who used to work for this really super wealthy rich daddy of hers, he was like, usne usko, arre bhai, call I know aa rahi hai, lekin guys hum abhi giveaway khel rahe, so you gotta wait for the call, okay? So then what happens is this guy who used to work for the father, he decides to hit on this chick and he goes like, nahi main to aapki beti se pyar karta hu, main aapki beti se shaadi karna chahta hu. To dad goes like, nahi yaar, we really like you bro, so theek hai, why not, let's get you guys married. Uske baad wo dono shaadi wadi karte hain, they feel like they're in love and all of that. Lekin uske baad wo honeymoon pe jaate hain aur honeymoon pe jaake they are on a lake aur ye banda jo hai wo bahut hi वैसे टाइप का निकलता है, एकदम यू नो लाइक नॉट सो नाइस और सारा नाटक ड्रामा एंड एवरीथिंग. सो ही व्हाट ही डज इज दे आर ऑन अ बोट और वो ना उस जिस नदी में ये लोग जा रहे होते हैं बोटिंग करने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं, क्रॉक्स या फिर एलिगेटर्स इन अमेरिका, एंड उसको पानी में फेंक देता है. पानी में फेंक देने के एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर, आई थिंक ओ कट गया, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लो यार, कई बार कॉल कट जाती है. तो एंड हियर वी गो. हाय कैन यू हियर मी?
1: हेलो.
0: हाय कैन यू हियर मी?
1: यस आई कैन हियर यू.
0: ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी द
1: करेक्ट आंसर. द नेम इज कमलेश, आई डोंट नो द करेक्ट आंसर बट द आंसर आई एम ट्राइंग टू गिव इज हंसी तो फंसी.
0: नहीं बिल्कुल भी नहीं. okay. वो तो दूर दूर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बट गुड ट्राई, आई विल गो टू द नेक्स्ट.
1: परिणीति चोपड़ा एंड सिद्धार्थ.
0: नो, दिस इज वे ओल्डर देन दैट वन. यू इसको पानी में क्रोकोडाइल में फेंक देता यार. ओके चलो नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर द ट्राई. हाय कैन यू हियर मी?
1: यस.
0: ओके पहले तो आप अपना नाम बताइए, देन टेल मी द नेम ऑफ द मूवी.
1: माय नेम इज संजय एंड आई थिंक द मूवी नेम इज खूनभरी मांग फ्रॉम रेखा एंड डैनी.
0: यस दैट इज करेक्ट, जहाँ पे रेखा वापस बन ठन के आती है. ओके ग्रेट संजय, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं आज का गिव अवे. तो गाइज मैं गाना लगाती हूँ, संजय आप लाइन पे बने रहिए एंड देन आई विल टेक योर इन्फो आफ्टर दैट. ठीक है? ओके गाइज एंजॉय दिस सॉन्ग. द मूवी इज करेक्ट, इट इज खून भरी मांग. अगर आपने नहीं देखी है तो देखो, इट्स लाइक अ कमबैक स्टोरी, इट्स अ प्रीटी एंटरटेनिंग मूवी. मैं तो बहुत बार देखी क्योंकि जी सिनेमा पे बहुत बार आती है, वो थी एटलीस्ट जब मैं इंडिया में थी, लेकिन वी विल सी यू इन अ बिट.

भाई गाइस, आपको वो वाला गाना याद है? दिस इज फ्रॉम द मूवी साथ ही आना. द मूवी इज वेरी बैड. आई मीन इट्स कम्प्लीटली, इट्स सो रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ एवर, वी आर नॉट ब्रेकिंग डाउन और एनालाइजिंग द मूवी राइट नाउ. वी आर जस्ट इंजॉइंग द सॉन्ग. लेकिन उसमें जो विवेक ओबरॉय का जो रोल था ना, आई फील सो बैड समटाइम्स दैट विवेक ओबरॉय वॉज सच अ ग्रेट एक्टर एंड ऑल्सो सच अ गुड लुकिंग एक्टर विद अ ब्यूटिफुल हेड ऑफ हेयर. और उसकी डांसिंग स्किल्स भी बड़ी अच्छी थी. पीपल यूज टू कंपेयर हिम टू लाइक ऋतिक रोशन. ऑफकोर्स नाउ ही लुक्स लाइक एटलीस्ट 30 years ओल्डर देन ऋतिक रोशन डज. एंड ऋतिक रोशन लुक्स लाइक ही इज गेटिंग यंगर एंड यंगर, वेयर एज विवेक ओबरॉय लुक्स लाइक ही इज लॉस्ट ऑल हिज हेयर अनफॉर्चुनेटली. और मतलब डार्क सर्कल्स वगैरह. आई सॉ अ रिसेंट इंटरव्यू एंड ही इज लाइक लेफ्ट बॉलीवुड ऑल टुगेदर एंड ही इज डूइंग समथिंग एल्स. ही इज बिकम सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल गुरु, आई थिंक, आई डोंट नो, बट I mean, he was something else. I used to really like him, and his breakup with Aishwarya Rai, like, I think completely messed him up. However, that's what we were talking about yesterday, guys. Remember, we were talking about breakups and how to get over a breakup. And kai baar breakup itni zyada zabardast ho jati hai that it is actually a real physical pain. It manifests in actual physical illness in your body. Yeah, that we were talking about all these. It's not just about hormones, and it's not just like kai baar people try to diminish your heartbreak by saying, oh, come on, it's just a stupid relationship. But you know what? It's not just a, you know, breakup from just another relationship. Sometimes these can become very intense. So we will continue that discussion today. Lekin wo discussion karne se pehle ye gana Zimran, who has requested this song from this new movie called Dadi Ki Shaadi. भाई दादी को भी शादी करने का बड़ा शौक है, तो क्यों नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए. मतलब व्हाई नॉट, शी आल्सो हैज सम मोर इयर्स इन हर यू नो वॉलेट और व्हाटएवर पॉकेट. ओके, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड सेंटी. अगर आपने नहीं देखी है, इट फीचर्स कपिल शर्मा एंड नीतू सिंह एंड इट्स आउट ऑन नेटफ्लिक्स, सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू वॉन्ट टू.

तो गाइज वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप्स. तो अगर आपका ऐसा कभी ब्रेकअप हो जाता है, वॉट इज योर कोपिंग मैकेनिज्म? वॉट इज इट दैट यू डू दैट हेल्प्स यू गेट ओवर द ब्रेकअप? ओके, या फिर एक्चुअली डोंट टेल मी. कल तो हमने पूछ लिया लाइक वॉट हेल्प्स यू टू मूव ऑन. हाउ एवर टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट साइंटिफिकली हेल्प्स द ब्रेन हील. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्ट हियर, बिकॉज येस्टरडे वी वर ट्राइंग टू यू नो प्रूव फैक्ट्स कि लव एंड रिलेशनशिप्स आर नॉट जस्ट अबाउट हार्ट्स एंड इमोशन, इट्स एक्चुअली अ न्यूरो साइंस एज वेल, राइट? तो वैसे वॉट हेल्प्स द ब्रेन हील? मे बी इफ यू इम्प्लीमेंट द साइंटिफिक मेथड्स, मे बी यू कैन गेट ओवर द ब्रेकअप फास्टर. नाउ वॉट डज साइंस से? ठीक है, फर्स्टली टाइम जेन्युइनली डज चेंज की ब्रेन की एक्टिविटी. तो ऑफकोर्स देर इज सो मच एविडेंस टू बैक दैट अप. फॉलो अप स्कैन्स एंड सम हार्ट ब्रेक स्टडीज, दे हैव शोन दैट द रिवॉर्ड सर्किटरी विच इज इन साइड आवर ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू एक्सेस फोटो या एक्स का नाम देखते ही, वो धीरे धीरे कम होता जाता है ओवर सब्सिक्वेंट मंथ्स. हाँ, महीने बोला है. पर्टिक्युलरली एज द पर्सन बिल्ड्स न्यू रूटीन्स एंड एक्सपीरियंसेस. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं एंड यू स्टार्ट न्यू एक्टिविटीज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, देन इट्स काइंड ऑफ ईजियर टू गेट ओवर अ पर्टिकुलर पर्सन और योर ब्रेकअप. सेकेंड, नॉवेल्टी एंड न्यू गोल्स मैटर, स्पेशली न्यूरोलॉजिकली. तो इसका मतलब क्या है? रिमेंबर द रिवॉर्ड सिस्टम जो है आपके ब्रेन में, इट क्रेव्स स्टिम्यूलेशन एंड रिवॉर्ड. ठीक है, तो वी गेट अटैच टू पीपल बिकॉज यू नो वी आर क्रेविंग दैट रिवॉर्ड सिस्टम की वो थोड़ा सा डोपामीन रश. अरे एक्स का कॉल आ गया, अरे यू नो एक मैसेज आ गया, यू नो दैट जस्ट अ लिटल बिट ऑफ अटेंशन, एक लाइक तुम्हारी स्टोरी पे डाल दिया इंस्टाग्राम पे, यू नो दोज आर लाइक स्मॉल लिटल थिंग्स. अ न्यू हॉबी, समटाइम्स थिंग्स लाइक अ न्यू हॉबी, सोशल कनेक्शंस, न्यू फिजिकल एक्टिविटी, मे बी यू गोइंग टू द जिम, मे बी यू ट्राइंग अ न्यू पिलाटीज क्लास. दिस गिव्स द सेम डोपामीन सर्किटरी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रिवॉर्ड which some psychologists argue can help you pull away from ruminating over an ex. तो अगर आप you know, ये तो normal वाली चीज़ है, ये तो बहुत लोगों ने बोला है कि you know if you are trying to get over someone then just trying out new activities like take a walk in the park if you don't do that, or some people start journaling or signing up for a dance class. I mean these are things I've actually done that when I was getting over this like really intense breakup I had like 10 years ago. Actually went and joined salsa dancing. One. Two, I decided I'm going to record my album. And I did that actually. So it actually helped me a lot. So aur kya bola hai is bare mein? We will talk about it after this little song. Come back. If you have a song request, feel free to call me 972-235-5555. And we will continue this discussion all the way until 10 o'clock today.

0: portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
4: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
3: Fikar not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: जीनी हुकम मेरे अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
11: मिराज लाउंज चलिए मेरे अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
10: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
11: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
10: और एंटरटेनमेंट,
11: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
10: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
11: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
12: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
15: Before we get on to the next part of the show, this is a quick little request for Sanjay.

तो गाइस जैसे हम बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट हेल्प हील योर ब्रेन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप. तो पहली दो चीजें हमने बोली, क्या बोली? फर्स्ट थिंग वाज ऑफ कोर्स, लेट मी ओपन इट अप. यस, दैट यू नो रिवॉर्ड सिस्टम जो है, यू नो फर्स्ट थिंग जो मेन चीज है कि टाइम हील्स. ऑफ कोर्स जितना ज्यादा टाइम आप ब्रेकअप में रहोगे, उतना ज्यादा टाइम यू नो यू फील बेटर इन अ फ्यू मंथ्स. बेसिकली यू हैव टू गिव इट टाइम. सेकेंडली, गेटिंग बिजी इन अदर एक्टिविटीज, सेटिंग अ न्यू चैलेंज, अ न्यू गोल, अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस. चाहे आप योगा ट्राई कर रहे हैं, पिलाटीज कर रहे हैं, या फिर मे बी यू ट्राई अ न्यू जिम, और मे बी यू ट्राई अ ड्रॉइंग और अ पेंटिंग क्लास, और मे बी आई डोंट नो, इट कुड बी एनी थिंग. मे बी यू ट्राई न्यू जॉब, समटाइम्स इवन अ जॉब हेल्प्स ऑनेस्टली. लाइक एनी थिंग कैन हेल्प. फाइंडिंग अ न्यू हॉबी लाइक लर्निंग हाउ टू कुक और वट एवर, यू नो लर्निंग सिंगिंग. सो दीज आर थिंग्स. थर्ड चीज जो है पता है क्या? सोशल सपोर्ट. तो इट सेज दैट कि अगर आप डिपेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर आफ्टर ब्रेकअप, इट्स नॉट जस्ट इमोशनली कम्फर्टिंग. ऑफकोर्स फ्रेंड्स और फैमिली वाला सपोर्ट है, इमोशनल कम्फर्ट भी मिलेगा, बट इट हैज अ रियल डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन द ब्रेन्स डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स. मतलब आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है ब्रेन में. कॉर्टिसोल सीम्स टू बैलेंस आउट व्हेन देयर इज मोर सोशल एक्टिविटी. एंड फाइनली, दिस इज द वन विच एक्चुअली सरप्राइजेज मोस्ट पीपल. सम पीपल आर लाइक कि क्लोजर होना जरूरी है, एंड विच इज इम्पॉर्टेंट एज वेल. लेकिन यू नो वॉट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट ऑल्सो से to go no contact, because science has proven that jab aap no contact nahi jate ho and you're still kind of in the zone with your ex around, aap unke social media profile check kar rahe ho, unki stories check kar rahe ho, then it you're still kind of attached to it, you're not completely broken up, okay? Then it therefore a lot of therapists say just a clean break, no contact is always beneficial for the brain. क्योंकि आप जो reward circuitry है उसको आप तोड़ रहे हो, then you are not rewarding your brain basically. And finally, physical exercise. जब आप physical exercise करते हो, it affects your mood regulation through several mechanisms. पहला तो serotonin, दूसरा endorphins release होती हैं. Several studies also show that breakup recovery significantly found that regular physical activity associated with faster improvements with mood and reduced rumination. तो मतलब जितना आप physical activity में involve होगे, आप उतना कम सोचोगे अपने breakup के बारे में, उतना मतलब you know you're gonna move on from your ex basically. तो we will continue this discussion. एक question आपके लिए पूछना चाहती हूँ. What is one healthy thing that you guys do that helps you after a breakup? जैसे मैंने बोला, like 10 years ago when I had this like super bad breakup, I actually made some goals and I decided, okay fine, this is what I'm going to do. I'm going to start this is interesting actually. I was still in India then and I said I'm going to start kickboxing because I always wanted to learn kickboxing. So I joined a kickboxing class, and second thing I did was I learned how to salsa dance, and that was my thing because I always wanted to do that. And third thing, मैंने अपने लिए goal set किया that I wanted to record an album with 5 of my original songs. And I landed up doing that. And I was really proud of it. कि भाई, I made these goals and I finished it. What do you like to do? Call me and tell me. 972-235-5555.

गाइस, अगर आप बिजनेस ओनर हैं इस एरिया में एंड यू आर फेसिंग द पावर कट्स बिकॉज ऑफ दिस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स दैट आर कमिंग अप इन DFW, देन यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन जस्ट रैंडम एनर्जी सोर्सेज. कॉन्टैक्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग फॉर स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, दे आर द प्लेस टू गो. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, reliable service and customized energy plans. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com. Okay guys, so it is 8:48 on the clock. Ek gana bajate hu, uske baad hum wapas aayenge and then we will complete our conversation.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी.
2: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
4: मेरा?
2: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो. फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
9: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
10: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
11: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
16: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

भाई वो दर्द भरा गाना था सोनू निगम की आवाज में। और अगर ऐसे ही दर्द भरे गाने और दूसरे वाले गाने भी सुनने आपको सोनू निगम की आवाज में लाइव लाइव लाइव, देन गाइस गेट योर टिकट्स फॉर सितंबर 26 एग्जैक्टली इन लाइक 10 डेज फ्रॉम टुडे। ही इज गोइंग टू परफॉर्म लाइव एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। Your favorite songs are iconic voice. All of this is going to be live. Tickets are available at Ticketmaster. Or for more information, you can also call 855-360-SHOWS. And of course, FunAsia Network is the exclusive media partner, and we will be there. Most of us will be there at the concert, so make sure you are there as well. Okay, guys, हम जैसे आगे बात कर रहे थे, we were talking about breakups. और ये गाना सुनते सुनते ना मुझे एक चीज ध्यान में आया। बिकॉज आई वॉज वॉचिंग, जिन्होंने मेरा शो शुरू का शो सुना था अराउंड 7 o'clock, यू नो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट दैट आई वॉज लिसनिंग टू, एंड देर वॉज दिस लाइक स्पिरिचुअल गुरु ओवर देयर। आई मीन आई वुडंट से स्पिरिचुअल गुरु, शी कॉल्स हर सेल्फ अ साइकिक, शी कॉल्स हर सेल्फ अ मीडियम, शी कॉल्स हर सेल्फ लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक चीज़ उन्होंने पता ये क्या बोली कि अगर आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा टाइटली पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपके हाथ से छूटेगा। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू चेज एंड परस्यू लव एंड जम्पिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू दी अदर, या फिर आज के ज़माने में इफ़ यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ दीज डेटिंग एप्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड जस्ट सो डेस्परेट टू फाइंड अ पार्टनर, देन यू विल कॉन्स्टेंटली मीट पार्टनर्स हु आर अनअवेलेबल, या फिर यू विल कॉन्स्टेंटली लैंड अप फाइंडिंग योर सेल्फ इन सिचुएशन वेर यू आर चेजिंग चेजिंग चेजिंग। एंड द सेम काइंड ऑफ लॉजिक अप्लाइज विद मनी एज वेल। अगर आप कॉन्स्टेंटली, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं आई हैव टू सेव मनी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं यू नो आई हैव टू सेव मनी, आई हैव टू सेव मनी, आई हैव टू सेव मनी, एंड यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि नहीं मेरे, जब भी मैं, इफ़ यू कीप रीइटरेटिंग दिस रियलिटी कि जब भी मैं पैसे सेव करता हूँ या सेव करती हूँ मेरे हाथ से पैसे चले जाते हैं, मेरे हाथ से, यू विल कॉन्स्टेंटली फाइंड योर सेल्फ इन द सेम काइंड ऑफ अ साइकिल अगेन एंड अगेन। और ये वाले जो कई बार गाने होते हैं ना, कभी अलविदा ना कहना, मतलब इन थियोरी दे साउंड वेरी गुड, लेकिन आई मीन आई लाइक टू बिलीव वॉट शी सेड दिस अदर गुरु, एंड आई डोंट लाइक टू बिलीव वॉट दिस सॉन्ग एक्चुअली सेड। क्योंकि कई बार आपको अलविदा बोलना ज़रूरी होता है, कई बार आप अलविदा बोलोगे तभी यूनिवर्स आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। कई बार वी होल्ड ऑन टू दैट रिलेशनशिप विच इज़ सो सो सो सो सो टॉक्सिक जस्ट बिकॉज यू बिन इन दैट रिलेशनशिप फॉर मैनी मैनी मैनी मैनी ईयर्स एंड यू आर सो टाइटली ग्रेस्पिंग ऑन टू इट, और आप कभी अलविदा नहीं बोल रहे हो उसको। लेकिन कई बार अगर आप अलविदा बोल देते हो क्योंकि इतना मुश्किल हो जा रहा है वो सिचुएशन, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी एनी थिंग, यू नो, एंड यू नेवर नो दैट मे बी वो बाधाएं जो आपके आ रही है, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू दोज बाधास फॉर अ रीजन, दैट मे बी यू वर सपोज टू चेंज योर डायरेक्शन द होल टाइम, मे बी योर पाथ वॉज समथिंग एल्स एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू ऑल दीज हर्डल्स नॉट जस्ट टू टेस्ट यू बट टू शो यू दैट ब्रो डोंट गो इन दिस वे, गो डोंट गो लेफ्ट, गो राइट, बिकॉज राइट इज द राइट वे टू गो, यू नो व्हाट आई मीन। सो यू नेवर नो एंड आई रियली लाइक टू बिलीव दैट। तो कभी अलविदा ना, मतलब कभी कभी कभार अलविदा तो बोलना जरूरी होता है, बेसिकली इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये गाना सुनते हैं, विल कम बैक एंड देन विल टॉक सम मोर।

0: Indian kitchen and bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
4: तुमसे मिलके दिल का है
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है।

भाई इनकी गाड़ी की तरह अगर आपके भी सपने डूब रहे हैं, इंक्लूडिंग योर करियर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज एंड यू फील लाइक यू आर स्टक बिहाइंड इन योर वर्क प्लेस, देन यू नो वॉट यू नीड टू डू. यू नीड टू रीच आउट टू प्ले इट फुल. ज्वाइन 4-time TEDx स्पीकर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेज शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप, लर्निंग हाउ टू रीपोजिशन योर वैल्यू, स्ट्रेंथन योर लीडरशिप प्रेजेंस, एक्सेलरेट योर करियर विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. भाई डैलस में हो रहा है ये वर्कशॉप ऑन September 19th. इफ यू वॉन्ट कॉन्फिडेंस एंड यू नो हाउ टू बिहेव एट योर वर्क प्लेस एंड डिमांड फॉर वॉट यू डिजर्व, देन रजिस्टर नाउ एट playitfull.com/dallas. स्टार्ट बिल्डिंग योर पावरफुल करियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी टूडे.

भाई अगर वो बेवफा है तो उसको क्यों वापस बुला रहे हो? ना जा बेवफा, आई थिंक दैट्स सुपर टॉक्सिक। यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट और बोल जा जा बेवफा, वापस मत आ कभी। क्योंकि पता है क्या, बेवफा जो चीटर्स होते हैं ना, वो अपने कार्मा का ग्रेव खुद ही कर रहे होते हैं डिग। विच मीन्स इफ यू हैव चीटेड ऑन समवन और इफ समबडी हैज चीटेड ऑन यू, ट्रस्ट मी, या तो दिस लाइफ और द नेक्स्ट लाइफ दे आर गोइंग टू पे फॉर इट इन सम वे और दी अदर। मे बी दे वॉन्ट गेट डायरेक्टली चीटेड ऑन बाय देयर पार्टनर, मे बी दे गेट चीटेड इन द बिजनेस डील और सम वेयर दे आर गोइंग टू गेट सम मेजर धोखा एंड सम अदर बेवफा इज गोइंग टू चीट ऑन देम टू। सो इसीलिए डोंट कॉल द बेवफा, लेट इट गो, डोंट कॉल बैड कार्मा इनटू योर लाइफ यार। लेट जिसको जाना है जाने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो भाई। जिंदगी जीने से याद आया कि आई नो जिंदगी जीने के लिए अमेरिका में स्पेशली आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है आपके पास और आपने नहीं लिया है एंड यू थिंक इट्स लाइक वे टू एक्सपेंसिव एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इट और आपकी कंपनी से भी नहीं मिल रहा है, देन यू कैन चेक आउट दिस कूल लिटिल प्लान बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। इट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट, ओनली फॉर 85 बक्स। तो जो मेन मेन चीज़ें होती है, प्राइमरी केयर, प्रिवेंटेटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ, वो सब मिलेगा आपको विद इन दिस प्लान। इट्स नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस भी है इसमें, सो नॉट एवरीबडी कैन गो फॉर दिस। गिव देम अ कॉल, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट इन केस यू कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस एंड यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। आई नो अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स हैव दैट एंड दिस इज अ प्रीटी गुड ऑप्शन फॉर दोज पीपल who don't want to pay a hefty amount every month.

गाइज, इट इज 9:45 ऑन द क्लॉक. मैं अभी निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में. एंड आई होप यू हैड ए वंडरफुल वेंसडे. कल लास्ट डे है इस हफ्ते का मेरे साथ, आपके साथ. उसके बाद कल हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. आज मैं हाफ वे बोल के नहीं छोड़ना चाह रही हूँ, इसीलिए आई एम नॉट स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू. सो वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट, यू नो, ब्रेकअप्स एंड वॉट मेक्स, नॉट ब्रेकअप्स एक्चुअली. टुमारो वे गोना टॉक अबाउट वॉट मेक्स that relationship last, what is that thing according to the neuroscientists and everything. We will talk about all this. I hope you had a wonderful rest of your Wednesday. We have made it halfway through the week. Tomorrow is Thursday and then it's Friday. Uske baad weekend. So enjoy the rest of your week. I will see you tomorrow at 7 o'clock as always.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
1: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
1: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
3: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
3: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
5: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
8: तुमसे मिलके

0: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
2: तुमसे मिलके दिल का है.
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
2: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

0: किया।
1: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Kunal Kapoor, and you're listening to Fun Asia Radio.

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
4: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, only on Fun Asia Radio.

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: बात नहीं बस गीत. Let's talk more music. Fun Asia Radio.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fear not. We have the perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Sadia.
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
9: तुमसे मिलके दिल का है.
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
10: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

बस आशिकों पे रहे।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में पड़ चुके होंगे।
1: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
2: देख बेटा,

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor, and you're listening to Funasia Radio.
2: बरसों हो गए बिछड़े अब साथ नहीं हो तुम फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: लंबी हाके कोई ना तुझे ताके
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Beta, 95% aaye?
3: Haan, mummy.
2: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
4: Mera?
2: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
6: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: This part of our show is proudly brought to you by AJ Fintax, offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping, as well as business advisory services for not just individuals, but many businesses here in town also. You can call them and get more information, 469-942-9888, 469-942-9888, or you can visit their website, which is agfintax.com, and get more information, and they can custom make it for you, depending on whatever kind of services you are looking at. agfintax.com.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
3: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज़ एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today. Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: We need to talk.
5: Ab kya hua?
4: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
4: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
8: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
9: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
8: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
9: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
10: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights be.
0: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है, मेरे दिल की हर धड़कन।

0: raving about him.
1: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
0: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
5: जी सुनते हो?
6: जी नहीं, एजी सुनते हैं.
7: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट, ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स older to game.
9: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out now.

Thank you.

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्लूसिव ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम
1: रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: अरे यार, घर मिल गया।
4: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
5: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
4: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
5: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
2: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
6: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
2: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
5: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
5: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney or tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
8: Bindas, bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
2: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
9: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
3: Now, sir, or price?
0: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
4: Main hero in ho.
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
0: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
7: बेटा, 95% आए?
8: हाँ मम्मी.
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: एक और लड्डू ले लो।
1: थोड़ी और बिरयानी।
2: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
3: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
4: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
5: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
5: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
7: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
2: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
8: डील कहाँ?
2: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
8: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: चीनी हुकम मेरे अका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
13: मिराज लाउंज, चलिए मेरे अका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
13: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
14: और एंटरटेनमेंट,
13: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
13: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ।
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ।
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ।
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
17: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
18: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: How may I help you?
2: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
1: Fikar not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
3: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oura Debt.

7 minutes past 10 o'clock and a very good afternoon. Good morning to DFW. This is Rumita and you're hanging out with me on Gup Shup Gali, only on 104.9 FM Funisha Radio. You know, aaj subha drive karte hue mujhe ek thought aaya ki agar kal se Google Maps band ho jaye, would you actually know how to get anywhere? Seriously. एक टाइम था जब हम डायरेक्शंस याद रखते थे, वॉलमार्ट के बाद लेफ्ट, फिर गैस स्टेशन के सामने राइट, एंड समहाउ पहुंच भी जाते थे. आज अगर जीपीएस बोल दे ना रीकैलकुलेटिंग, हमारी हार्ट बीट एक्चुअली में रीकैलकुलेट होने लगती है. एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें मतलब बेटर कर दी है. मैप्स, वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन बैंकिंग, फूड डिलीवरी, इवन AI नाउ. बट एवरी अपग्रेड प्रोबेबली केम विथ अ टाइनी डाउनग्रेड टू. मैप गेव अस कन्वीनियंस, मे बी टुक अवे अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. सोशल मीडिया ने हमें सबसे जोर दिया है, मतलब पुराने स्कूल्स के दोस्त अभी पॉपअप हो रहे हैं हमारे टाइम लाइन में, मे बी, बट दे टुक अवे आर सेंस ऑफ कनेक्शन इज वेल. स्ट्रीमिंग गेव अस अनलिमिटेड चॉइस और अब 45 मिनट सिर्फ डिसाइड करने में निकल जाते कि एक्चुअली में हमें देखना क्या है. सो दैट्स टुडेज फर्स्ट गपशप टुडे ऑन गपशप गली विद मी रुमिता. टेक्नोलॉजी ने आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज बेटर की है और एक चीज क्या रुइन कर दी? थिंक अबाउट इट. मैं अपना लिस्ट तब तक तैयार करती हूँ.

16 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gapshap Gali with me, Ramita. And this Afghan Jalebi, I mean, Katrina Kaif, actually, aajkal bahut hi zyada news mein hai, and for a very different and wrong reason. Because recently, Ganesh Chaturthi celebration mein, unki public appearance ke baad, social media par people started actually commenting on her postpartum weight gain, and unfortunately, trolling bhi shuru ho gayi. Yaar, fans or even actor Ali Zafar aage aaye or has spoken against this body shaming that this beautiful actress of the Indian film industry, Katrina Kaif, is facing. And this actually connects perfectly with what we are talking about today. Technology ne celebrity aur audience ke beech ki ye jo distance hai, jo almost khatam kar di hai. कितना हार्मफुल है. पहले स्टार्स को हम मूवीज, मैगजीन्स, इंटरव्यूज में देखते थे. आज somebody steps out of their house and within minutes, photos, zoom-ins, comparisons, comments, सब कुछ दुनिया के सामने. एक्सेस डेफिनेटली बढ़ गया है. हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, बट मे बी एक्सेस ऑल्सो मेड अस फील एंटाइटल्ड टू कमेंट ऑन somebody's पर्सनल लाइफ, बॉडी, रिलेशनशिप और क्या नहीं. आई मीन सब कुछ. टेक्नोलॉजी ने हमें एक क्लोजर, यू नो, इट गेव अस अ क्लोजर लुक इन समबडी एल्सेस लाइफ, इन पीपल्स लाइफ, बट डिड इट ऑल्सो मेक अस फॉरगेट वेयर द बाउंड्री एक्चुअली इज़.

0: Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

यू नो, टेक्नोलॉजी ने एक और इंटरेस्टिंग चीज चेंज कर दी है हमारी पेशेंस लेवल. पहले फोटोज डेवलप होने का वेट करते थे, फेवरेट शो के नेक्स्ट एपिसोड के लिए पूरा हफ्ता वेट करते थे, और किसी को मैसेज भेजा तो इंस्टेंट रिप्लाई की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. आज वाईफाई का स्पीड 10 सेकंड कम लगे तो यार दिमाग मतलब बर्स्ट हो जाता है, क्या ही बोलूं. फूड डिलीवरी 5 मिनट लेट हो तो ट्रैकिंग रिफ्रेश करते, मैसेज पर ब्लू टिक आ गए और रिप्लाई नहीं आया. That becomes very interesting. Convenience definitely made life easier, but did it also make us incredibly impatient? आपको क्या लगता है? Think about it. Break के बाद इसी गपशप को आगे बढ़ाते. You're listening to Gupshup Gali with me, Ramita, only on 104.9 FM, Funny Share Radio.

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना, बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
4: भूख लगी जोरों की
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
8: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
9: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
10: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
9: Aakhir kya hai is biryani mein?
10: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
12: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
13: Sadia.
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

रफी साहब ने तो मोहब्बत का दर्द गाया था, लेकिन एडल्ट लाइफ में दर्दे दिल, दर्दे सर, दर्दे कमर, मतलब पूरा पैकेज मिल जाता है। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली विद मी रमिता। जोक्स अपार्ट, हेल्थ इज वन थिंग वी रियली शुडंट एक्चुअली कीप पोस्टपोनिंग। एंड अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास पैशन हेल्थ आउट ऑफ नेटवर्क ऑफ योर इंश्योरेंस प्लान है, तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज पैशन हेल्थ डायरेक्ट ऑफर्स अफोर्डेबल प्राइमरी केयर फॉर जस्ट $85 अ मंथ, जहां पे इंक्लूडेड है प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकल मैनेजमेंट एंड टेली हेल्थ एंड मेनी मोर। एंड फॉर दोज पैक्ड वीकडे शेड्यूल, अगर आप फ्रिस्को में रहते हैं, तो यू हैव अ गुड न्यूज, बिकॉज फ्रिस्को लोकेशन इज नाउ ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज टू। वैसे तो पूरे DFW मेट्रोपॉलिटन में पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज स्कैटर्ड एवरीवेयर, चाहे वो फ्रिस्को हो, मकैनी हो, एलन हो, एनीवेयर यू गो यू सी Passion Health Primary Care. But to let you know, Frisco location is now open on Saturdays and Sundays. Call or text 214-666-6259 or visit passionhealthphysicians.com. And to let you know, ये जो मैंने बोला ना कि $85 a month affordable Passion Health Direct है, this is not a health insurance and there are terms and conditions and eligible restrictions are there also which are applied. So visit Passion Health to know more about this plan.

0: यू नो टेक्नोलॉजी ने हमें कन्वीनियंस तो दी बट आई थिंक हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत चेंज कर दिया. और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, नेहा ने थोड़ी देर पहले कॉल किया था और ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. वो बोल रही है कि पहले कोई भी फेवरेट सॉन्ग आता था तो हम पूरा सुनते थे, लिरिक्स याद करते थे, कैसेट्स रिवाइंड करके सेम लाइन दोबारा सुनते थे. आज इवन जेन्युइनली आज तो अच्छे गाने बन रहे हैं बट अगेन दैट अटेंशन स्पैन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, 20 सेकेंड में मन बोलता है यार अगला गाना. रील्स, स्वाइप, वीडियो स्किप, सॉन्ग्स फॉरवर्ड, हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया मांग रहा है. सो मे बी टेक्नोलॉजी ने वेटिंग खत्म कर दी है बट क्या उसके साथ हमारा पेशेंस और अटेंशन भी लूज कर दिया है? थिंक अबाउट इट. दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता और ये गपशप जारी रहेगी. पहले छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं.
1: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: इतना सब और प्राइस?
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं।
14: एक और लड्डू ले लो।
17: थोड़ी और बिरयानी?
14: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
18: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
19: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
20: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
21: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
20: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
21: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
20: सच में सब संभालेंगे?
21: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
22: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

अगर टेक्नोलॉजी का सही बिल्कुल कमाल का यूसेज हुआ है तो इस सॉन्ग का ये जो रेंडिशन है उस पे हुआ है, दे टेकन फ्रॉम द मूवी मिर्जापुर। वाह क्या गाना है ये। यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली विद मी रमिता। और यू नो टेक्नोलॉजी का एक कंट्राडिक्शन है जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हम शायद पहले कभी इतने कनेक्टेड नहीं थे। आई मीन मैं दुनिया के किसी भी कोने में किसी को 2 सेकंड्स में वीडियो कॉल कर सकती हूँ। मेरा जो स्कूल फ्रेंड है वो ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा है वो भी मुझे पता है। और जिस इंसान से मैंने 10 साल से बात नहीं की वो अभी ग्रीस में अगर वेकेशन भी मना रहा है ना तो वो भी मुझे पता है। बट समटाइम्स एक ही डिनर टेबल पर बैठे 4 लोग 4 अलग अलग स्क्रीन्स देख रहे होते। आई मीन फोन में 700 कॉन्टैक्ट्स है लेकिन अगर लाइफ में जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो एक्चुअली आपके पास कितने लोग हैं कॉल करके उस प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए? मे बी 4 मे बी 5। सो टेक्नोलॉजी ने हमारी कनेक्शन इम्प्रूव की है? एब्सोल्युटली की है। मैं तो मानती हूँ डेफिनेटली हम सबके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। बट क्या उसने हमारी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव किया है? आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर अबाउट इट। अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहीं पे अगर डिनर पर जाए तो सबके फोन्स 1 घंटे के लिए टेबल के बीच में रख दो, ना ही कोई चेकिंग, ना पिक्चर्स, ना मैसेजेस। अगर आप कर पाओगे तो मुझे बताना। Stay till then, stay tuned and keep listening to 104.9 FM Funisha Radio.

Attention span, patience, conversations, privacy, information. Sab kuch literally fingertips par hai. But isi easy access ne ek aur interesting cheez create kar di hai. You know, ab information sab ke paas hai aur somehow expertise bhi sab ke paas aa gayi hai. Ek reel dekhi nutrition experts, do podcast sun liye relationship coach. और तीन फिनेंस के वीडियोस अगर देख लिए तो ब्रो लेट मी टेल यू वेयर टू इन्वेस्ट. सो एक गाने एक ब्रेक के बाद गपशप में थोड़ी और स्पाइस होने वाली है. व्हाई इज एवरीवन सडनली एन एक्सपर्ट? यू नो इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल नॉलेज के बीच का जो डिफरेंस है और रहना भी चाहिए वो कहीं पे डिसअपियर हो गया. थिंक अबाउट इट. Chota sa break, and as I told you, a gana or chota sa break, and I'll be right back. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gapshap Gali with me, Ramita.

0: हम सियासी मुजरिम हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, हमें किताबें मिलनी चाहिए।
1: उनकी भूख हड़ताल पूरे 114 दिन तक चली, 114 दिन।
2: Never before in the history of any...
1: दुनिया के इतिहास में कोई भी क्रांतिकारी इतने दिन तक ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में

minutes past 11 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gup Shup Gully with me, Rimita. And that brings to my last hour of my show today. Aur socha ki is ghante kuch different discuss karte hai. Gup Shup थोड़ा दूसरी तरफ घुमाते हैं. यू नो, आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत ही एक ब्रांड न्यू क्वालिफिकेशन इन्वेंट किया है. इट्स कॉल्ड आई वॉच्ड 3 रील्स. एक रील अबाउट प्रोटीन, यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट. एक रील, दो रील अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स, देन आप रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हो. और अगर एक पूरा इन्वेस्टिंग के टॉपिक पे आपने पॉडकास्ट देख लिया तो आप खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर समझने लगते हो. और 3 वीडियोस अबाउट एआई, टेक एक्सपर्ट और सबसे फेवरेट जो मेरी है, आई डिड माय ओन रिसर्च. हेलो, रिसर्च मतलब क्या है? गूगल का पहला 3 रिजल्ट्स. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव दैट.

जो मेरी है. आई डिड माई ओन रिसर्च. हेलो, रिसर्च मतलब क्या है? गूगल का पहला 3 रिजल्ट्स. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल एंड दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव. बट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज आर नॉट द सेम थिंग. सो टुडेज सेकेंड गपशप क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी चीज है जो आपने लोगों पे नोटिस किया है, और वो भी कॉन्फिडेंटली नोटिस किया है, लोग एक दूसरे को एडवाइस देना जब स्टार्ट करते when they clearly have no idea, like parenting, relationship, fitness, money, career. बताओ बताओ, कौन सी ऐसी एक्सपर्ट एडवाइस आप सुनते हो जो खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड एडवाइजर्स है या फिर एक्सपर्ट्स है? स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. वी वॉन्ट द गपशप, नॉट द लॉसूट्स.

सच का यार, आप चैन कहाँ है, स्पेशली जब आप कुछ भी खाने जाओ. यू नो, खाने के साथ बहुत ही एक फनी चीज होती है, आप जो भी खा रहे हो किसी ना किसी के पास उसके बारे में ओपिनियन जरूर होगा. प्लेट में राइस लिया, इतने कार्ब्स, डिजर्ट लिया, शुगर देखिए, सैलड लिया, बस इतना ही खाओगे? मतलब खाइए तो प्रॉब्लम, ना खाइए तो भी प्रॉब्लम. हेल्थ और न्यूट्रिशन की जेन्युइन एडवाइस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट हर मील को मील को कैलकुलेशन बना देना भी जरूरत नहीं है. समटाइम्स फूड इज ऑल्सो अबाउट टेस्ट, कंपनी एंड सिंपली एंजॉइंग योरसेल्फ. और आज अगर डिनर में बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का या दाल मखनी का मूड है, then straight away head to Tandoori Flame in Garland, because Monday through Thursday 5 se 8 baje tak it is the flame hour in Tandoori Flame, where you can order any two entrees and receive one complimentary appetizer. So adhik jankari ke liye you can visit their website, which is tandooriflametx.com, and khaake aake batana kaisa laga aapko butter chicken.

100 अंधेरों में भी रोशन हो, उस हकीकत की तलाश है। तेरी दहलीज पे छोड़ाए उस मोहब्बत की तलाश है। झुकने की इबादत को तो समझे जहां वालों, कटने पे जो हासिल हो उस जन्नत की तलाश है।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. Business owners के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ.
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ.
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ.
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
13: Fikar not, we have the perfect solution.
14: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
15: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
16: लैपटॉप में.
15: इन्वेस्टमेंट,
16: गूगल ड्राइव,
15: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स.
16: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
15: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
14: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
17: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
14: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
18: We need to talk.
19: अब क्या हुआ?
18: Nothing. It's not you.
19: Oh no.
18: It's the distance.
19: Distance? We live 10 minutes apart.
18: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
14: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Sadia.
20: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
21: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
22: तुमसे मिलके दिल का है.
21: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

It's past 12 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. Very good afternoon to all the listeners. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. अच्छा जी, बहुत हो गई इंटरनेट एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और फूड एक्सपर्ट्स की बात. अब देखते हैं DFW में बॉलीवुड एक्सपर्ट्स कितने हैं. Because it's time for that guess the movie in 3 clues. मूवी गेस करनी है और एक लकी विनर को मिलेगा a $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम Fun Pizza Kitchen, which is located in Frisco. So, kursi ki peti bandh lijiye because aa raha hai aapke tino clues. Clue number one. Is movie ki kahani ek aise young man ke around ghoomti hai jiska aag ke saath ek mysterious connection hai. Clue number two. Film mein ek secret world of powerful ancient अस्त्रज है एंड वन ऑफ द अल्टीमेट अस्त्र जिसके अराउंड पूरी पिक्चर है. एंड क्लू नंबर 3 विच इज द इजिएस्ट, और इसके बाद अगर गेस नहीं किया तो यार हिंदी मूवीज देखना छोड़ दो. हीरो का नाम शिवा है, हीरोइन का नाम ईशा है. बस अब तो पक्का आंसर आ ही गया होगा. एंड यस, आ गया है क्योंकि मेरे फोन लाइंस ब्लिंक करने लगे हैं. सो जो अभी भी नंबर ढूंढ रहे हो उनके लिए बता दूं, 972-235-5555 इज द स्टूडियो नंबर. सही जवाब देने वाले को मिलेगा $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन लोकेटेड इन फ्रिस्को. देखते हैं असली बॉलीवुड एक्सपर्ट कौन है.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. Yes, the movie name is Milan Thak. मैं विनर का नाम बोल रही थी. द मूवी नेम इज ब्रह्मास्त्र और जो विनर मुझे मिल गया है उनका नाम है मिलांग ठाकुर. कंग्रेचुलेशंस. जी हाँ, इन तीनों क्लू में से आपने प्रूव कर दिया कि आप ही है बॉलीवुड एक्सपर्ट. वैसे इससे ज्यादा इजी ना ही क्लूज हो सकता है, ना ही कोई मूवी का नाम, ना ही कोई गेम. और इसीलिए तो फनीशिया रेडियो इज द फन इन योर लाइफ, द फन पार्ट इन योर लाइफ. एंड गेस व्हाट, आप जीत गए हैं मिलन ठाकर. आप जीत गए हैं $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. चलिए, अब ब्रह्मास्त्र की अगर कितनी ही बात हो रही है, चर्चा हो रही है, देन व्हाई नॉट लिसन टू दिस ट्रैक फ्रॉम देयर मूवी ब्रह्मास्त्र.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. And Gup Shup chal rahi about experts giving unsolicited advices or ek uncomfortable thought aapke liye pesh karti hu. Sometimes we actually don't need advices. Hame sirf confirmation chahiye hoti hai. Aapko कॉफ़ी पसंद है, लोग आपको बोलेंगे हाँ हाँ कॉफ़ी पियो, आपको वीडियोस भी देखेंगे कि आप कौन से कॉफ़ी पीने से आपका वेट लॉस होगा या आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा. आपको कॉफ़ी टेरिबल लगता है, डोंट वरी, देयर इज अनदर वीडियो वेटिंग फॉर यू. एक बंदा बोलेगा यार 5 बजे उठो, अनदर बोलेगा कि भाई कुछ भी करो 8 घंटे सो जाओ. कोई कहेगा कार्ब्स आपके लिए ईविल है, कोई कहेगा कार्ब्स खाओ दिमाग खुलेगा. एंड बाय द एंड यू आर ईटिंग टोस्ट एट नून कंप्लीटली कंफ्यूज्ड. और एल्गोरिदम मेक दिस इवन मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज वंस यू एंगेज विद वन टाइप ऑफ कॉन्टेंट आपको वही चीजें सामने आने लगती है. सो आस्क योर सेल्फ वेन वॉज द लास्ट टाइम यू जेन्युइनली चेंज्ड योर ओपिनियन बिकॉज यू लर्न समथिंग न्यू ऑन द सोशल मीडिया. वैसे मेरी एक कॉलर है जो रोज मुझे कॉल करती है, रैंडमली वो टॉपिक स्टार्ट करती है रिलेटेड टू द सॉन्ग आई एम प्लेइंग और उसके बारे में 2-3 मिनट बात करके अपना नाम बिना बताए वो रख देती है. बट द कन्वर्सेशन दैट वी हैव इज क्वाइट एंजॉयबल. बट आज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कही है कि लोग कुछ भी एक्सपर्ट दे यार, किसी ने कहा है दुनिया 5 साल में खत्म होने वाली है. एंड दैट इज व्हाट शी इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग, या कोई ऐसी एक्सपर्ट होगी या रील देख लिया होगा उन्होंने. तो बेसिक समरी ऑफ हर इंटेंट ऑफ लेटिंग मी नो इज कुछ भी हो जाए, एंजॉय करो लाइफ.

0: आना तुम मेरे गले, हे कभी आना तुम मेरे गले,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तुम मेरी गली।
2: आप जी हाँ, आप हो हमारे गली में ही। दिस इज गपशप गली विद मी रुमिता ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो। और यू नो, एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत सबसे ज्यादा तब समझ आती है जब डिसीशंस एक्चुअली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर ओपिनियंस फ्री में हजार मिल जाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ बिजनेस यू वांट सॉल्यूशन दैट एक्चुअली make sense for your needs. और इसीलिए अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, देन तारा कमर्शियल एनर्जी हैज बीन सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002, जहां पे आपको मिलेगा कंपटीटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स। कॉल करें 844-428-2808, दैट्स 844-428-2808, और यू कैन विजिट TaraEnergy.com today.

और इसी के साथ आज की गपशप गली को करते हैं रैप। एक्सपर्ट्स तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन ओपिनियंस को थोड़ा फिल्टर जरूर करना। दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज गपशप गली। कल फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक और नए गपशप के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन।

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
5: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
4: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
5: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
8: जीनी, हुकम मेरी आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
9: मिराज लाउंज, चलिए मेरी आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
9: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
8: और एंटरटेनमेंट,
9: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
9: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
10: बेटा, 95% आए?
11: हाँ मम्मी।
10: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
10: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
13: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: 89 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop infotainment.
1: Hello, good afternoon and namaskar Dallas. Aapki host Ayushi aa gayi hai yahan par fir se studio mein aapke saath कुछ सुहाने सुहाने गाने और प्यारी प्यारी बातें लेकर के आप सबका स्वागत करते हैं. थर्सडे है, हफ्ता ख़त्म हो रहा है. बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, राइट? मुझे भी होती है जैसे ही वीकेंड आता है, पर फिलहाल ऐसे लग रहा है कि वीकडे से ज़्यादा काम वीकेंड पे है. बिकॉज ऑफ ऑल द फेस्टिविटीज अराउंड ये हाल है कि वीकेंड ज़्यादा बिजी है वीकडे से. क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है?

Your dream home may be closer than you think. Since 1998, Dream Home Mortgage has helped families nationwide with personalized mortgage solutions for buying or refinancing. Aap inko call kar sakte hain 972-245-5626 par ya fir visit kar sakte hain dreamhomemortgages.com. dreamhomemortgage.com. I'm sorry, it's dreamhomemortgage.com. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं. और आज ना ऐसे मैं बैठी हुई थी और मुझे याद आ रहा था कि पहले हमारे यहाँ टॉप 10 गाने हुआ करते थे जो MTV पे आते थे और वो रिवर्स ऑर्डर में चला करते थे. तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज जब मैं भी आपको इंडिया के टॉप बॉलीवुड के टॉप 10 ट्रेंडिंग सॉन्ग्स लेकर के आऊँ. एंड यू वोंट बिलीव नंबर 1-2 पे कौन सा गाना है. इट्स नॉट अ बॉलीवुड सॉन्ग, उस पर उसकी तरफ हम जाएंगे. लेकिन फिलहाल आपको सुनाते हैं जो नंबर 10 पे गाना है वो.

So that was Awarapan 2. तो फिर आओ 2.0 वर्जन इमरान हाशमी और दिशा पतानी की ये फिल्म है और आज हम प्ले कर रहे हैं कुछ टॉप 10 गाने और हम सोच रहे हैं कि अगर हम अगले हफ्ते भी आए तो एवरी थर्सडे हम आपके लिए लेके आएंगे द टॉप 10 सॉन्ग्स विच आर ट्रेंडिंग ऑन यू नो बॉलीवुड के मूवीज के या फिर जो भी गाने हैं वो. सो दिस वॉज द नंबर 10 सॉन्ग आवारापन का और अगला गाना आपके लिए लेकर के आ रहे हैं. बड़ा ही ट्रेंडिंग है यार आजकल तो सब कुछ रील से ट्रेंडिंग हो रहा है पर एक जमान था जब हम लोग MTV पे टॉप 10 गाने देखा करते थे और एवरी फ्राइडे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग If I'm wrong, please correct me, call me and tell me that Fridays को नए गाने भी रिलीज हुआ करते थे और उसी पे इंतज़ार करते थे. चित्रहार का एक ज़माना था फिर हमारा MTV का ज़माना आया और उसके बाद से अभी हम लोग तो बस ऑनलाइन जाके यू नो Spotify पे और ऐसे सावन पे गाने सुन लेते हैं या फिर YouTube पे देख लेते हैं. बट पहले वेट किया करते थे TV पे इन गानों के आने का. अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं लेकिन उसके बाद उसके पहले ही बता दें कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय AG Fintechs offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping, and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. तो ये दूसरा गाना बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग चल रहा है. मूवी भी रिलीज हो गई है.

0: मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना,
1: तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

तो ये गाना था नंबर 9 पर और द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी हनुमान अंच. आज हम टॉप 10 गाने प्ले कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में. 9वें नंबर पे था ये गाना. अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, कुछ ज़रूरी जानकारी दे दें आपको कि अगर आप H1B पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या फिर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं, एंड इफ़ यू प्लानिंग योर पाथ टू द US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, you can email them at info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. तो चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं आपको.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
6: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
12: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
11: Matlab great food, great drinks, and great company, yani ki main.
13: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
14: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
15: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
16: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
17: हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपने होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे और आपको हम कुछ ट्रेंडिंग बॉलीवुड सॉन्ग सुना रहे हैं, टॉप 10 जो इस हफ्ते के हैं. और एक गाना है और एक फिल्म है जिसने अभी तक लिस्ट को छोड़ा नहीं है, वो है सैयारा. और हर दिन मुझे एक ना एक फरमाइश आती ही है इस फिल्म के गाने की. सो दिस टाइम विदाउट एनी रिक्वेस्ट हमारे लिस्ट पे 7 नंबर का गाना है ये जो कि चल रहा है अभी स्टूडियो से आपके लिए.

0: PMJ Jewels is now in Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Explore beautiful gold, diamond and bridal collection for every celebration. Visit PMJ Jewels on Main Street, Frisco. Jewelry that tells your story. तो फ्रिस्को पे इनका लोकेशन है मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में. आप जा सकते हैं PMJ Jewels. फिलहाल टॉप 10 गाने चल रहे हैं और भाई इस टॉप 10 गानों में ना तीन गाने जो है वो सैयारा के ही हैं. एंड दिस मूवी हैज़ नॉट लेफ्ट द चार्ट फॉर अ वाइल. बहुत समय से इसके गाने सबको ऐसे ही पसंद आ रहे हैं.
1: सो उससे पहले एंड ऑफ स्टोरी.

तो भाई हम सुन रहे हैं आज टॉप बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑफ द वीक, और सैयारा का ये गाना बैक टू बैक, सैयारा के तीन गाने अभी भी लिस्ट को टॉप कर रहे हैं। और आज मुझे एक रेगुलर कॉलर है, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज़ अ बिग फैन ऑफ सैयारा सॉन्ग्स एंड आई होप ही इज़ लविंग इट टुडे, बिकॉज सारे गाने सैयारा के ही चल रहे हैं फिलहाल।

0: Sayara ka title song, song. Sayara ka title song Ahaan Pandey and Anit Padda ki ye film hai aur humne socha tha ki Ahaan aur Anit Padda hame kahin dikhenge par abhi tak kisi aur film mein kisi aur show mein inki koi charcha nahi ho rahi hai. Anyways, अगले गाने की तरफ चलते हैं. टॉप 10 सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड चल रहा है अभी फिलहाल इस सेगमेंट में मेरे साथ. अगला गाना है फिल्म 21 से.
1: मैं सोचता हूँ एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर
0: अगस्त्य नंदा एंड सिमरन भाटिया.

0: ब्यूटिफुल ट्रैक अनुव जैन की आवाज़ में, कोक स्टूडियो का ये नंबर था और ये गाना बहुत ही ट्रेंडिंग है एंड बिलीव मी, मैंने खुद ये गाना पहली बार पूरा सुना है। इट्स अ लवली सॉन्ग। एक्चुअली मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ कि सोशल मीडिया ने ना हमारा स्पैन, अटेंशन स्पैन इतना कम कर दिया है किसी भी चीज़ को लेकर के, दैट 30 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। आई नो देयर वाज टाइम जब पूरा पूरे गाने के बोल जुबान पे हुआ करते थे। अभी जब ये लास्ट में ये गाना पहुंचा, दैट पार्ट इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया एंड उतने ही बोल मुझे इसके याद हैं एंड इट्स समथिंग दैट इज़ कंसर्निंग, वरिंग, और मुझे ही लगता है बार बार कि हम कर क्या रहे हैं। बट इतना ज़्यादा ये हमारे लाइफ में हर तरह से घुस गया है, चाहे एड्स देखने हो, चाहे मूवी के ट्रेलर्स देखने हो, सब कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है एंड इट्स एक्चुअली किलिंग आवर अटेंशन स्पैन, इट्स किलिंग अ लॉट ऑफ आर, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है यार ये। दिस इज व्हाट आई कैन से। मतलब सोचने की शक्ति भी चैट जीपीटी और जेमिनी के पास चली गई है। पहले सिर्फ गूगल कर करके दिमाग खराब हो गया था, अब उसी से सवाल और जवाब मांग लेते हैं, लेटर्स लिखवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट वर्किंग गाइज। एनीवेज, टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी वापस आते हैं और गानों का सिलसिला चलता रहेगा। फनेशिया 104.9 एफएम।
1: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहां?
2: Simple, Basera Grand, one destination, double the flavor.
3: Matlab, crispy golden dosa?
2: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
3: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
1: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy, together.
4: Zindagi ek safar hai suhana, yahan कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे Suite 205, Frisco.
5: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
6: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
5: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: Bindas Bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
5: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
0: हेलो वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनीशा 104.9 FM पे और मैं आपके साथ होती हूँ मंडेज टू फ्राइडे फ्रॉम 12:30 टू 2:30 और आपको एंटरटेन करती हूँ कुछ प्यारे और खूबसूरत गानों के साथ और कुछ मेरी चटर पटर बातों के साथ। ऐसे ही कुछ कुछ चलता रहता है यहाँ फनीशा के स्टूडियो से। तो अगर अभी फिलहाल तो हमारा टॉप 10 चार्ट चल रहा है ऑफ द वीक और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने हैं एंड कुछ गाने तो मैंने खुद ही पहली बार पूरे सुने हैं। गाने सारे सुने इसमें से मैंने बट हाँ पूरे आज सुन रही हूँ आप लोगों के साथ। और इस सेगमेंट के बाद हम आपकी फरमाइश लेंगे तो फोन लाइंस अभी भी ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आप अपनी पसंद की फरमाइश दे सकते हैं। हम जा रहे हैं अगले गाने की तरफ जो कि टॉप 10 गानों में से दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, दूसरे नंबर पे गाना है फिल्म धुरंधर का। धुरंधर ने अभी तक अपना जो क्रेज है वो लोगों में बना के रखा हुआ है और इसके गाने आज भी सब लोग गुनगुना रहे हैं, थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं एंड हियर्स दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी धुरंधर।

धुरंधर का ये ट्रैक ये हमारे टॉप 10 गानों में से है नंबर 2 पे, और आपको लेके चल रहे हैं अगले गाने की तरफ जो कि इस हफ्ते ट्रेंडिंग है, नंबर 1 पर है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। लेके एक जरूरी जानकारी लेके आई हूँ जो पहले आपको दे दूँ। फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी। Now growing with a brand new name and a second Frisco location, introducing Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, X-rays, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services, and all under one roof. Open 7 days a week, from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, no appointment needed. तो चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं, जल्दी से लेके चलते हैं।

Meds Pass services and all under one roof. Open 7 days a week or from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, no appointment needed. तो चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं, जल्दी से लेके चले आपको नंबर एक गाने की तरफ. ऐसे पहले भी होता था ना, क्यूरियोसिटी बनाते रहते थे लोग, बोलते रहते थे पहले वीजेज फिर आरजेज और उसके पहले बहुत सारे एड्स और बकवास, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हम जल्दी से आपको लेके चलते हैं नंबर वन सॉन्ग ऑफ द वीक की तरफ. ये है आवारापन 2 से इमरान हाशमी और दिशा पटानी है इस फिल्म में.

सो दैट वॉज द फाइनल नंबर हमारे सेगमेंट का. जी हाँ, हम कर रहे थे टॉप 10 गाने ऑफ द वीक और नंबर एक पे चल रहा था तेरा मेरा रिश्ता फ्रॉम अवारापन टू इमरान हाशमी और दिशा पटानी की फिल्म है ये. उम्मीद करती हूँ सेगमेंट पसंद आया होगा. हर थर्सडे कोशिश करूंगी आपके लिए लाने का टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ताकि हम सुने कुछ नए, कुछ अच्छे और पूरे पूरे गाने. क्योंकि भाई सोशल मीडिया तो ऐसा सवार है मेरे सर पे कि हम कोई भी गाना पूरा सुन ही नहीं रहे आजकल. जो वहाँ से वायरल होता है ना, उसको जा कर के ढूंढते हैं, और उसमें भी सब नहीं, कोई कोई ही गाना ढूंढ पाते हैं. चलिए एनीवे, शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ चलते हैं. और उसके पहले आपको बता दें कि आपके पास एक मौका है $10 ऑफ जीतने का ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ 50 और मोर. पर कैसे, कहाँ, कब? तो आप जीत सकते हैं ये गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. यू कैन एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विथ एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच. लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, विजिट chandigarhbites.com फॉर डिटेल्स. तो चलिए जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल करके रखिए, मतलब पहले गाना सुन लीजिए. अब इतने सारे प्यारे और अच्छे गानों के बाद आपको लेकर ही चल रहे हैं कुछ तड़कते भड़कते नंबर्स की तरफ, मतलब एकदम ठुमका वाले नंबर्स लगा रही हूँ मैं, क्योंकि भाई वीकेंड आ रहा है, खुशियाँ मनानी ज़रूरी हैं. तो फ़ोन उठाइए और मुझे बताइए कौन सी फिल्म का है ये अगला गाना, और लेकर के जाइए ये $10 ऑफ का गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से.

ओहो, तो हीरो नंबर वन का था ये गाना और हमें मिल गया है सही जवाब। पहले तो जोरदार तालियां हो जाएं जुनैद खोजा जी के लिए। तो भाई आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ। बहुत बहुत बधाई, जाइए और बढ़िया खाना एंजॉय करिए। इट्स अ गुड प्लेस, इट हैज़ गुड फूड। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है इसलिए आपको सलाह दे रही हूँ। चलिए अशोक को आगे बढ़ाते हैं और अब इन तड़कते भड़कते जो नंबर्स मैंने ढूंढे हैं इस पर थोड़ा ठुमका लगाते हैं। वीकेंड आ रहा है, एंजॉय करते हैं, तो गोविंदा के नंबर्स से अच्छा क्या होगा ठुमका लगाने के लिए। उनके ही गानों पे लगाए जाए थोड़े ठुमके। गाड़ी में बैठे बैठे आप ठुमक लीजिए, स्टूडियो में खड़े खड़े हम ठुमक लेते हैं। अगला गाना लेकर के आ रही हूँ गोविंदा की ही मूवी से।

0: तो वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और आपको याद दिला दूं कि मैं स्टूडियो में फरमाइशें ले रही हूं आपकी, तो अगले आधे घंटे हम सिर्फ और सिर्फ आपके पसंद के गाने चलाएंगे, तो स्टूडियो में कॉल करना मत भूलिए। स्टूडियो का नंबर है 9722355555 और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पर। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए मज़ेदार गाने और करते रहिए कॉल। आप मुझे अब मिलेंगे हर मंडे से लेके थर्सडे तक, फ्राइडे तक, सॉरी मंडे से फ्राइडे तक एवरी डे हम मिलेंगे। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे और जल्दी से वापस आते हैं, फिर सुनाते हैं आपको अच्छे अच्छे गाने।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
6: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
7: डील कहाँ?
6: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
7: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो।
13: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
16: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
17: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
18: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
17: नहीं।
18: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
17: नहीं।
18: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
17: वो भी नहीं।
18: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
19: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
8: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
2: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao kahani mein twist.
3: Chicken tikka purani mohabbat, but burrata chicken tikka new love.
6: And pistachio lamb chops,
3: full on flavor ka fusion.
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: Sadia.
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज
15: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
12: तुमसे मिलके दिल का है.
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे. और हमारे अगले सेगमेंट में हम कुछ रिक्वेस्ट लेने वाले हैं और पहली रिक्वेस्ट आ भी चुकी है, दूसरी भी आ चुकी है, तीसरी भी आ चुकी है. मेरे पास है सिर्फ आधे घंटे, तो प्लीज़ जल्दी से कॉल करिए और फरमाइश दीजिए 9722355555 पे. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे. खूबसूरत और प्यारे गानों का सिलसिला यहाँ चलते रहता है. फिलहाल इस गाने की फरमाइश आई है सोहेल की तरफ से मरियम को.

That was a beautiful track from Raid 2. और आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, आपको लेकर के चलते हैं. ये जो फरमाइश आई है कोक स्टूडियो नंबर, लेकिन उसके पहले आपको बता दें दैट यू हैव टू गेट रेडी फॉर अ अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. जी हाँ, सोनू निगम आ रहे हैं डैलस में, लाइव इन कॉन्सर्ट है एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन Saturday, September 26th, 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. अगर टिकट नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि आपके फेवरेट गाने होंगे, एक आइकॉनिक आवाज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो होगी, एंड दिस विल बी ऑल लाइव. टिकट अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360-SHOWS. आई रिपीट, इट्स 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन, सोनू निगम लाइव, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर इज फनेशिया नेटवर्क, एंड टेकिंग यू टूवर्ड्स अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर फ्रॉम कोक स्टूडियो.

Here was this beautiful track from Coke Studio, Rekha Bhardwaj और उत्पल उदित की आवाज में था ये गाना, और ये एक भोजपुरी गाना है यार। रीजनल गानों को कोक स्टूडियो जिस तरह से प्लेटफॉर्म दे के खूबसूरत बना रहा है ना, उसका क्या ही कहना है। एंड रेखा भारद्वाज हरसेल्फ इज सिंगिंग इन भोजपुरी। और भाई आप लोगों को पता लग गया कि हम बिहार से हैं, कहीं कहीं से रीजनल गाने ढूंढ लेते हैं मेरे यहाँ वाले के लोग, बहुत बहुत बहुत बहुत तेज़ है। मैंने बोला मैं रीजनल नहीं बजाऊंगी, तो कोक स्टूडियो का नंबर है तो हमने कहा चलो यार प्ले कर देते हैं। ब्यूटिफुल ट्रैक एंड यस, कोक स्टूडियो इज गिविंग सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू भोजपुरी म्यूजिक, to all the regional songs. They're so beautifully done and we are enjoying it. और अच्छा लगता है क्योंकि भोजपुरी गानों को बड़ा ही बदनाम किया हुआ है कि मतलब सारे गाने ऐसे बिल्कुल ही छिछोरे टाइप होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लुक एट द म्यूजिक, लुक एट द वॉइस, लुक एट द वर्डिंग्स, इतना प्यारा मतलब और इतना प्यारा गाना। अगले गाने की तरफ चलते हैं। ये एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है एंड दिस इज ऑल्सो बैंड सनम के नाम से है ये बैंड जिसका गाना है। आज सब लोग बड़े प्यारे और अनोखे गाने ढूंढ के ला रहे हो यार, आई एम सो हैप्पी। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक, सनम है इस बैंड का नाम।

That was a beautiful track and अगले गाने की भी फरमाइश आ गई है. बहुत ही प्यारे खूबसूरत अनोखे गाने लाए. देखते हैं कि इस सेगमेंट में कौन सबसे प्यारा सबसे खूबसूरत गाना लेकर के आता है. एक्चुअली सारे गाने बहुत अच्छे हैं पर अलग अलग ढूंढ ढूंढ के ट्रैक्स निकल रहे हैं. कोई को स्टूडियो का नंबर है, कोई सनम का नंबर है या यू नो सनम बैंड का गाना है. सनम का नंबर नहीं है. तो गलत ना समझ लें आप मुझे, बस क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ. तो ऐसे ही प्यारे गाने आप फरमाइश कर सकते हैं. कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर जो कि है 9722355555. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पे. 2:30 बजे तक हूँ आपके साथ, आपके पसंद के गाने प्ले करूंगी. एक और ही बहुत ही प्यारा सा नंबर जो कि बहुत ही ब्यूटिफुली रिक्रिएट किया हुआ है.

So here was this beautiful track, and this is a recreated version. Nadia Ke Paar ka ye gana hai. Isko gaya hai Varsha Singh Dhanoa ne, aur jo original gana tha wo Ravindra Jain ji ne gaya tha, and singers the Jaspal Singh ji aur Hemlata ji, and Varsha Singh Dhanoa recreated this song and gave a tribute to these legendary singers and music directors. Bahut hi pyara gana hai, bahut hi khoobsurat gana hai. Gana khud mein hi khoobsurat hai, par jis hisab se recreate kiya hai aur bhi pyara lag raha hai. One of my favorite, ek time pe bahut favorite tha, main repeat pe sun rahi thi ye gana, itna pyara lag raha tha mujhe aur abhi bhi mujhe bahut pasand hai. चलिए अब वक्त हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का. आखिरी गाना जो मैं लगा के जा रही हूँ वो आपकी ही फरमाइश का है, शिवानी की कॉल पे ये गाना है. कोक स्टूडियो का एक और बहुत ही प्यारा और धमाकेदार नंबर लेकर के आ रही हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे विदा दीजिएगा आज के लिए. आज के लिए आपकी होस्ट आपको टाटा बाय बाय कर रही है. कल फिर मिलेंगे 12:30 से 2:30 बजे तक, और ऐसे ही कुछ प्यारे और खूबसूरत गाने चलते रहेंगे, कुछ चटपटी बातें भी चलेंगी मेरी. और अगर आप मुझे और सुनना और देखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बिहारी मोमिन अमेरिका है मेरा हैंडल, तो वहाँ भी देख सुन सकते हैं आप मुझे. फिलहाल इस गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ, इंजॉय करिए इसको, और कल फिर मिलेंगे ठीक 12:30 बजे.

0: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
1: लैपटॉप में.
0: इन्वेस्टमेंट?
1: गूगल ड्राइव.
0: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
1: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
0: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: Documents ya parcel bhejni hai?
5: Haan.
4: Ghar relocate karni hai?
5: Haan.
4: Gaadi bhi transport karni hai?
5: हाँ भाई हाँ.
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Dallas, are you ready? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
13: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
14: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट. पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ वनीशा रेडियो पर.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap. Main hu Kiran aapke saath. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Aur ji, aaj hai Thursday. Aap jante hain, first Thursday of every month aapke liye lekar aati hu Food Junction, jahan hum baat karte hain kuch mukhtalif mumalik ki, unke popular shehron ki, jahan hum as a tourist jate hain to hame wahan kya khana chahiye, unke local favorites, unke desi favorites, unke dessert favorites and so much more that is there to eat. और जो रेस्ट ऑफ द थर्सडेज होते हैं हमारे, उसमें लेकर आती हूँ आप ही की फरमाइश पे वो 90s का बॉलीवुड गाने, कुछ 90s की दिहाई के आपके लिए प्ले किए जाते हैं, वो ऐसी मेमोरीज जिनको, मतलब मेरे लिए तो वो बॉलीवुड की अर्ली मेमोरीज हैं. दैट इज वेयर माई लव फॉर बॉलीवुड स्टार्टेड. सो लेट्स बिगिन आर 90s का बॉलीवुड जर्नी राइट हियर विद सुनहरी किरण. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग.

0: All right, जी बिल्कुल सही जगह पे ट्यून्ड इन हैं आप 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो और आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में वक्त आ चला है आपको कनेक्ट करने का विद माय फैमिली होम लोन. और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होम मॉर्गेज एक्सपर्ट फ्रॉम myfamilyhomeloan.com जो कि फैमिलीज को होम लोन ऑप्शन समझाने में मदद करते हैं. और लेट्स वेलकम शेफाली पंजवानी इन द स्टूडियो. शी इज गोइंग टू टेल अस मोर अबाउट माई फैमिली होम लोन. गुड आफ्टरनून Shefali ji, how are you doing?
1: I'm doing great. Good afternoon to you and good afternoon to all Phoenicia listeners.
0: Thank you so much for connecting with us this afternoon, Shefali ji. Please begin by telling our listeners, what is My Family Home Loan aur aap kya kya services provide karte hain?
1: Sure. We help borrowers with a customized financial solutions for their residential and commercial needs. For buying homes, investment homes, or buying commercial real estate or businesses.
0: All right, that sounds good. So, Shefali ji, पहला सवाल आपसे ये पूछते हैं कि अगर टेक्सस होम ओनर्स हैं तो हमारे घर में इक्विटी है लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि उस इक्विटी को एक्सेस करने के ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, तो क्या आप हमें गाइड कर सकती हैं लिटिल बिट?
1: Yes, great question. So, उसकी ऑप्शंस ये है, HELOC है, which is a line of credit or home equity loan hai, which is a HELOAN. Simple language mein, let me explain it to everyone. HELOC ek credit line ki tarah kaam aata hai, jo aapke home se secured hoti hai. Aapko ek limit di jati hai, aur aap wo ek limit hai, usko aap use karte ho, aur usme aap punch out and punch back in kar sakte ho. So ye hai HELOC. और उसमें आपको जितना यूज करना है, जितनी आपकी नीड है, उस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो. सो इट्स लाइक अ 3 ईयर ड्रॉ, 5 ईयर ड्रॉ, डिपेंडिंग ऑन योर लोन प्रोडक्ट. फिर सेकेंड ऑप्शन जो है वो ही लोन है, जिसमें एक अप्रूव्ड अमाउंट दिया जाता है, विच वर्क्स जस्ट लाइक एज अ फिक्स्ड लोन. जो सेकेंड लोन होता है विदाउट टचिंग योर फर्स्ट मोर्गेज. इफ यू हैव अ फर्स्ट मोर्गेज एट अ वेरी लो रेट, it doesn't make sense to touch that and refinance it. So un homeowners ke liye ye HE loan ka option best rehta hai ki they can only take out a second loan with the same fixed rate and a same fixed payment, and there is a loan terms available for 10 years, 15 years, 20, 30 depending on your scenario and depending on your need. So ye ek option hai jo homeowners ko agar unke paas equity hai, they can take it out. Only the difference is between HELOC and HELOAN is HELOC is only available for primary residents. Jabki HELOAN is available for primary and investment properties. And if you have any questions based on your individual scenario, like if you are self-employed or you have a businesses and that you would like to still take the equity out, you can reach me out at 469-734-3338.
0: There you go, 469-734-3338. Shefali ji, hame ye bhi bataiye, for real estate investors, ke jinki rental property buy karna chahte hain jo log, lekin traditional income documentation qualification ko difficult bana rahi hai, to aise scenario mein, what should we do and how can you help?
1: ओके, ऐसे सिनेरियो में DSCR लोन ऑप्शन एक हो सकता है, जिसका मतलब है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड, DSCR. सिंपल लैंग्वेज में ये प्राइमरली ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी की क्वालिफाइंग रेंटल इनकम क्या है, उसके बेस के ऊपर उसका DTI कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लेंडर गाइडलाइंस. और वो एक रेंटल ऑप्शन अवेलेबल है रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए DSCR. फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्वालिफाइंग रेंट, लेट्स से इट्स 2500 मंथली और आपका हाउसिंग एक्सपेंस है $2000, विच इंक्लूड्स योर प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सो आपका DSCR होता है 1.25. हाउ डिड आई गेट दैट नंबर? 2500 डिवाइडेड बाय 2000, दैट्स योर DSCR रेशियो 1.25. सो ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए. जिनकी इनकम ट्रेडिशनल नहीं है, दो दे डू हैव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड दे हैव अ क्वालिफाइंग रेंटल इनकम, सो जस्ट बेस्ड ऑन दैट लोन प्रोग्राम इज अवेलेबल फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स. If you have any questions regarding this, if you are self-employed, W-2, and also owns an investment portfolio, and you would like to either purchase or take the equity out from that home, you can call us, and we can sit down with you, and we can discuss the scenario. You can reach me at 469-734-3338. Again, my number is 469-734-3338.
0: There you go. That was Shefali Panjwani from myfamilyhomeloan.com. 469-734-3338 is the way to get in touch with her. Shefali ji, thank you so much for connecting with us this afternoon. We will talk to you next time.
1: Thank you all.
0: You have a good one.

0: और इसी के साथ आपको बताती चलूं जी कि पेज 3 ईटरी आपके लिए लेकर आए हैं फ्लेवर्स ऑफ मुंबई एंड लखनऊ. जी हाँ, हब 121 इन मिकनी में ये लोकेटेड हैं. और यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या कुछ नहीं मिलेगा, ये सवाल है. फ्लेवरफुल अगर आपकी चाट पसंद है, आपने स्नैक्स खाने हैं, क्विक बाइट्स खाने हैं, वो भी आपको यहाँ मिलेंगे. अगर आपको प्रॉपर खाना खाना है तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा, जैसे कि तंदूरी डिशेज, बिरयानी, हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स भी मिलने वाली हैं अगर आप ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. और उसके साथ बहुत कुछ, सैंडविचेस हैं, रोल्स हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल. आपकी चॉइस होनी चाहिए. वेजिटेरियन है आप, नॉन वेज हैं, पेज 3 ईटरी पे आपके लिए कुछ मौजूद है. विजिट फॉर डिनर, डेट नाइट, इवनिंग विद फ्रेंड्स, एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू. एक्सप्लोर देयर मेन्यू बाय विजिटिंग page3eatery.com.
1: 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
5: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट इन्फो एट सीमा मेहता लॉ फर्म डॉट कॉम
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
11: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
12: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
11: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
12: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
10: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
13: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
14: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
15: होको,
16: अरे बस भी करो यार।
17: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
16: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
5: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
15: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.
18: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

सुन रहे हैं आप 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो, वो 90s का बॉलीवुड लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ और कुछ 90s के खूबसूरत गाने। अच्छा जी, हर हफ्ते जब मैं 90s का बॉलीवुड लेके आती हूँ तो हम कोई ना कोई थीम फॉलो करते हैं, जैसे कि द बैंकेबल स्टार्स ऑफ दोज ईयर्स, या फिर पिछले हफ्ते हमने नदीम श्रवण को कवर किया था अपने 90s के बॉलीवुड में, जो उन्होंने 90s में गाने दिए। और उससे पिछले हफ्ते हमने बात करी थी जी द टॉप हीरोइंस की, तो पांच लीडिंग लेडीज के हमने जिक्र किया था, जिनमें नाम आया था माधुरी दीक्षित, काजोल, साथ ही साथ जो है जूही चावला और करिश्मा कपूर एंड मनीषा कोइराला। ये बात हमने की थी और पांच इनके मैंने आपको बातें भी बताई थी, गाने भी प्ले किए थे। और फिर मैंने आपसे कहा था कि द रेस्ट ऑफ द 5 या 10 जो भी हमारे पास हैं, बिकॉज देयर वर मेनी गर्ल्स हु वर वर्किंग इन दी 90s और बड़ी जबरदस्त जबरदस्त फिल्में हमें दे रही थी, तो अब जो है हम एक और नाम की तरफ जा रहे हैं जो कि 90s की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टार थी। उनके गाने बड़े मशहूर होते थे, बड़े सारे जबरदस्त आप कह लीजिए डांस नंबर्स भी उनके ऊपर परफॉर्म होते थे। एक बारिश का गाना तो ऐसा उन लोग के ऊपर पिक्चराइज हुआ जिसने हिस्ट्री बना दी, वो कहते हैं ना वन ऑफ दोज आइकॉनिक बारिश नंबर्स, आपने जरूर पहचान लिया होगा। अगर आपने नहीं पहचाना तो फिर मैं आपको मौका दे रही हूं पहचानने का विद बरिस्ता का गिव अवे। जी हाँ, बरिस्ता फ्रिस्को के लिए ये खबर, और बाकी तमाम लोग भी जो इंजॉय करते हैं अच्छे खाने को, कि रेडी हो जाइए रॉयल फीस्ट के लिए। पॉपुलर बरिस्ता हाउस from Denton is now open in Frisco by Prism Bar and Grill. और आप यहाँ enjoy कर सकते हैं authentic हैदराबादी biryanis, North Indian favorites, delicious desserts हैं, बहुत कुछ है उनके menu में। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए। दे आर लोकेटेड एट 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सस। तो अब आपको क्या करना है, मिलेगा आपको ये $20 का गिफ्ट कूपन फॉर योर डाइन इन ओनली। अगर आप ये $20 का गिफ्ट कूपन जीतना चाहते हैं फॉर डाइन इन ओनली, तो ये जो गाना मैं आपको प्ले कर रही हूँ ये उन्हीं स्टार पे पिक्चर आया, इट्स जस्ट अ गिव। आपको मुझे बताना है कि ये स्टार कौन सी है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो 90s की बहुत ही फेमस स्टार थी, और मुझे इस मूवी का नाम आप जरूर बताइए कि किस मूवी से ये गाना लिया गया है, और जीत लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए इसमें जीतने के लिए फॉर दिस $20 गिफ्ट कूपन फ्रॉम बरिस्ता हाउस इन फ्रिस्को, डाइन इन ओनली।

जी हाँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बस में नहीं है आपको विनर अनाउंस करना. जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उसी सीक्वेंस को एक नंबर असाइन होता है, एक मैथ के फॉर्मूले में जाता है और उसके बाद लकी विनर अनाउंस होते हैं. सो आप सबकी सबसे पहले फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. $20 का ये कूपन आपके लिए आया था जो आप जीत सकते थे फ्रॉम बरिस्ता हाउस लोकेटेड इन फ्रिस्को. नया खुला है ये, ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. और दिस कूपन इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली एट द फ्रिस्को लोकेशन. और आप सब लोग मुझे कम से कम 15 कॉल्स तो डेफिनेटली रिसीव हुई हैं और नंबर्स डाल दिए गए हैं और लकी विनर का नंबर अनाउंस हो चुका है. हमारे आज के लकी कॉलर हैं कॉलर नंबर 8 विच इज सौरभ चौधरी. सौरभ, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. 2 दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर गिव अवे. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एज ऑलवेज I cannot thank you enough. आप सबकी पार्टिसिपेशन का अभी भी फोन लाइन बज हो रही है जी. कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है. नो मोर आंसर्स आई एम गोइंग टू टेक. बट बहुत बहुत शुक्रिया. आई स्टिल हैव वन मोर गिव अवे फॉर यू. लेकिन इट रियली रियली मीन्स अ लॉट जब आप लोग फोन उठाते हैं, टाइम निकालते हैं और कॉल करते हैं. थैंक यू.

जी हाँ, 90s के दौर का तस्करा हो तो बड़े बड़े नामों में रवीना टंडन का जिक्र ना हो तो उसके बगैर वो तस्करा हो जाता है इनकम्प्लीट. शी बिकेम वन ऑफ द डेकेड्स मोस्ट रिकग्नाइजेबल स्टार्स विद मूवीज लाइक मोहरा, जिसका भी आपने गाना सुना था, टिप टिप बरसा पानी, या फिर दिलवाले, जिसमें वो अजय देवगन के साथ नजर आई थी, या फिर अंदाज अपना अपना और खिलाड़ियों के खिलाड़ी, या फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, या फिर जहां से उनके करियर का आगाज हुआ था वो नजर आई थी फिल्म पत्थर के फूल में, जो सलमान खान के साथ थी, एंड इट वाज अ सुपर हिट मूवी एज वेल विद सम ब्रिलियंट सॉन्ग्स. तो ऑफ कोर्स, और टिप टिप बरसा पानी तो खैर लेजेंडरी बन ही गया था. सो 90s में जो है रवीना टंडन ने जो काम किया, जो अपनी मूवीज दी, उनकी वजह से 90s डेफिनेटली उन्हें याद रखने वाला है. एक बार आपको उनके बारे में बताती चलूं कि 26 अक्टूबर 1972 वाज हर डेट ऑफ बर्थ, और 90s की लीडिंग लेडीज में शुमार होता है उनका. सेवरल अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए, नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला उन्हें, दो फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हैं. दैट इज द चार्म ऑफ रवीना टंडन.

अच्छा जी, रवीना टंडन की बात तो हुई, अब हम आते हैं एक और नाम पे। 90s की बॉलीवुड की हीरोइंस की बात हो और इस आइकॉनिक लड़की की बात ना हो, दैट इज जस्ट नॉट हैपनिंग। शी इज़ उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने 90s में हीरोइंस का वो जो ट्रेडिशनल इमेज होता है उसको कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया। शी जस्ट ब्रोक द सीलिंग एंड उसमें से निकली एक नई बॉलीवुड की हीरोइन, मतलब एक नई बॉलीवुड हीरोइन की डेफिनेशन, दैट वॉज उर्मिला मातोंडकर। उनमें इनोसेंस भी थी, ग्लैमर भी था, डांस का कॉन्फिडेंस भी था और सबसे इम्पॉर्टेंट, शी हैड दैट स्क्रीन प्रेजेंस दैट लेफ्ट एवरीबडी ऑड व्हेन वी सॉ हर इन रंगीला। लेकिन रंगीला से पहले ये जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, बचपन में उर्मिला नजर आई थी हमें। बचपन की वो फिल्म अगर आपको याद हो, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, 1980s के ये चाइल्ड रोल्स उन्होंने किए। 90s तक आते आते उन्होंने जब लीड रोल्स में आई तो फिल्म्स लाइक नरसिम्हा, जिसमें उनका एक बड़ा पॉपुलर गाना था, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, और फिर अंतम, और फिर आगले लग जा, द्रोही जैसे प्रोजेक्ट्स तो उनको मिले, नजर आती रही वो। लेकिन कहां से उनके करियर ने अपना ग्राफ चेंज कर लिया, दैट वॉज द मूवी रंगीला, विच वॉज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। राम गोपाल वर्मा ने रंगीला दी हमें, लेकिन उर्मिला मातोंडकर को मिली मिली जोशी का कैरेक्टर, और मिली जोशी ने एब्सोल्यूटली पूरा वो, अभी जो हम बात कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ बॉलीवुड हीरोइंस को बदल दिया। सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस वन, उर्मिला मातोंडकर एंड एब्सोल्यूटली बैंकेबल स्टार्स इन द 90s।

0: और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल डीलिंग विद द पेपर वर्क, द इंश्योरेंस कंपनीज, द लीगैलिटीज और साथ ही साथ आपकी अपनी सेहत. और इतना कुछ होता है इस सारे प्रोसेस में, तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड गेट एन अटर्नी टू डू द रेस्ट फॉर यू. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. दे विल फाइट योर केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अंटिल यू विन. 469-300-5046 या फिर attorneyomar.com.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.

लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, माई टाइम इक्विटी आपको ऑफर करती है पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिटायरमेंट प्लानिंग. कोई भी आपका अपनी फाइनेंसिस को लेके कंडीशंस हो या रिक्वायरमेंट्स हो तो आप माई टाइम इक्विटी को कॉल कीजिए फॉर द राइट गाइडेंस. दे विल बी एबल टू हेल्प यू. माई टाइम इक्विटी डॉट कॉम या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 4697021272. 4697021272 is that number. Give them a call and see how they can be helpful to you. और इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ. सुन रहे हैं आप वो 90s का बॉलीवुड और इसमें हम आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसी फीमेल लीडिंग लेडीज की जिन्होंने 90s के हमारे बॉलीवुड के एक्सपीरियंस को चार चांद लगा दिए. और उनमें हम आ पहुंचे थे उर्मिला मातोंडकर की बात कर रहे थे और उर्मिला का ये गाना आप सुन रहे थे. You know the iconic moves जो उन्होंने रंगीला में की. रंगीला से उर्मिला ने हमें एक नया definition दिया बॉलीवुड की हीरोइन का, the dance, the colorful clothes, the attitude, the glamour. और मतलब उनको देख के उसके बाद लोग ये कहने लगे कि शी इज नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस, शी इज अ स्टाइल स्टेटमेंट. और जो कि हमने बाकी आगे कुछ सालों में देखा. अच्छा, अब हम बढ़ रहे हैं अगली हीरोइन की तरफ जिन्होंने 90s में हमें बहुत कुछ खूबसूरत दिया. ब्यूटिफुल आइडेंटिफिकेशन उन्होंने बनाई, एक बहुत ही प्यारी सी गर्ल नेक्स्ट डोर मैं इनको कहती हूँ. बिल्कुल खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की जो कि बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे यू नो इट कैन बी मी एंड यू, इट कैन बी एनी वन. दैट इज सोनाली बेंद्रे, नोन फॉर हर एलिगेंस एंड हर डिस्टिंक्टिव लुक्स. कुछ बेहतरीन फिल्में उन्होंने हमें दी जैसे कि सरफरोश, मेजर साहब, डुप्लीकेट, दिल जले, हम साथ साथ हैं. तो चलिए फिर एक गाना आपको सोनाली बेंद्रे का सुनाते हुए आगे चलते हैं. दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी टक्कर जिसमें नजर आई थी सोनाली सुनील शेट्टी के साथ.

on my. Sonali Bendre is an acclaimed Indian actress aur ji model thi, author hain aur saath hi saath Bollywood ke 90s ke Bollywood pe Sonali ka ek alag hi raj tha. She remains a deeply respected figure in Indian media today, known for her graceful screen presence, saath hi saath kuch behtareen filme jin mein wo nazar aayi, jaise ki Sarfarosh, Hum Saath Saath Hain, Dil Jale aur bahut sare superstars, major superstars ke saath Sonali ne kaam kiya. To ji, ek aur gaane ke saath hum agli heroine ki taraf badhenge. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं. अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में शामिल नहीं हो रहा, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपको ऑफर कर रहे हैं एक इनिशिएटिव, दैट इज पैशन हेल्थ डायरेक्ट. This is a program that they are introducing. $85 a month में आप इसकी membership ले सकते हैं और इस membership में आपको मिलेगा primary care, preventive care, medication management, telehealth और भी बहुत कुछ. This is not a health insurance plan. Eligibility restrictions do apply. तो आपका कोई भी सवाल है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं. That number is 214-666-6259. This is passionhealthphysicians.com.

यहां आप लॉग ऑन कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोर. और ये भी आपको बताऊं कि उनकी जो फ्रिस्को लोकेशन है दैट इज ओपन सैटरडेज एंड संडेज एज वेल फॉर योर कन्वीनियंस. सो गिव देम अ कॉल, टेक्स्ट देम, चेक देम आउट व्हाट दे आर ऑफरिंग यू एंड यू माइट जस्ट बी एबल टू अवेल इट. तो इस अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं हम, लेकिन गाने पे बढ़ते हुए मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहती हूँ कि द व्यूज एंड ओपिनियंस दैट आर एक्सप्रेस्ड इन दीज लाइव अनाउंसमेंट्स एज वेल एज द इंटरव्यूज दैट वी डू हियर ऑन आवर शोज आर पेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड डज नॉट नेसेसरली शेयर द ओपिनियंस ऑफ द रेडियो स्टेशन नॉर द आरजे.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

समझाई। आमिर खान के साथ नजर आई थी सोनाली बेंद्रे इस फिल्म जिसका नाम था सरफरोश में। अच्छा जी, अब आपके लिए एक गिव अवे लेके आई हूँ डक्ट टाइम की तरफ से। सबसे पहले तो डक्ट क्लीनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है ये हम सबको मालूम है, और अगर आप जो है उसको कहीं आपको मोल्ड फील हो रहा है, डस्ट फील हो रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। फॉर प्रोफेशनल डक्ट क्लीनिंग दैट हेल्प्स रिमूव डस्ट, क्लियर क्लॉग्ड वेंट्स, इम्प्रूव एयर फ्लो और रिड्यूस हिडन फायर हैजर्ड्स, ट्रस्ट कीजिए डक्ट टाइम को। और डक्ट टाइम की फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है, वी विशिंग हिम देम एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल फर्स्ट एनिवर्सरी एंड लॉट्स ऑफ हैप्पी ईयर्स अहेड, सक्सेसफुल ईयर्स अहेड, प्रॉस्परस ईयर्स अहेड। और आप अगर ये अपनी डक्ट क्लीनिंग करवाना चाहते हैं तो मैं आपको नाम और नंबर दे देती हूँ जीतू पटेल डक्ट क्लीनिंग के। इनको आपने कॉन्टैक्ट करना है टू अरेंज और टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर अ क्लीनर सेफर एंड फ्रेशर होम। जीतू पटेल साहब का नंबर ले लीजिए 9728772500, 9728772500 उनका नंबर। और जी अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे एयर डक्ट टाइम आपके लिए लेकर आए हैं 50% ऑफ ऑन योर डक्ट क्लीनिंग। जब आप डक टाइम को कॉल करेंगे, अपनी बुकिंग करेंगे और ये गिव अवे आप जीते हुए होंगे तो मिलेगा आपको 50% ऑफ। तो यानी कि आपको कॉल करके ये गिव अवे जीतना पड़ेगा। अच्छा, जीतना पड़ेगा तो आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा तो बात सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सोनाली बेंद्रे का हम बता रहे थे कि 90s के दौर की वन ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेसेस में, वेरी पॉपुलर एक्ट्रेसेस में सोनाली का नाम शुमार होता है। तो आप मुझे बताइए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि सोनाली ने अपने करियर में सिर्फ एक ही दफा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। आपको मुझे कॉल करके बताना है कि वो कौन सी फिल्म के लिए और क्या अवार्ड जीता था उन्होंने। इट इज़ अ डिफरेंट एंड काइंड ऑफ अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो ज़रा देख के पढ़ के बताइएगा 9722355555। कौन सी फिल्म के लिए सोनाली ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता और किस गाने के लिए जीता था, ये बताना है आपको मुझे। वंस अगेन द नंबर इज 9722355555। और मैं जो आपके लिए गाना लगाने लगी हूँ सोनाली का, ये मेरा ख्याल है कि वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स। कुछ गाने होते हैं जिनमें मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रोमांटिक गाना, तो ये है टॉप 10 की लिस्ट में आता है मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स।

0: जी हाँ, मैं समझा कि जैसे मेरी धड़कनों को तेरी धड़कनों का पयाम आ रहा है। आप सुन रहे थे गाना फ्रॉम द मूवी नाराज, सोनाली बेंद्रे और अतुल अग्निहोत्री पर पिक्चराइज्ड। आपसे सवाल पूछा था जी कि बताइए कि सोनाली बेंद्रे ने अपने करियर का पहला अवार्ड कब जीता और किस चीज़, किस मूवी के लिए जीता और क्या अवार्ड मिला उन्हें। तो जवाब सबसे पहले, आप सबकी फ़ोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, 1995। दैट इज़ द ओनली टाइम शी वन अ फिल्म फेयर अवार्ड, नॉट वन बट ट्वाइस। और दो उनको फिल्म फेयर मिले उस दिन जिस दिन फिल्म फेयर की सेरेमनी थी। सेंसेशनल डेब्यू जीता उन्होंने फॉर द मूवी नाराज, जिसका ये गाना आप सुन रहे थे, और उसी के साथ लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर जीता उन्होंने फॉर द मूवी आग, जिसमें वो गोविंदा के साथ नजर आई थी। तो दोनों ही, मतलब ऑफकोर्स इट वॉज सो प्रॉमिसिंग एंड देन शी गेव अस सम ब्रिलियंट मूवीज एंड सम एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल म्यूजिक। तो जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। विनर अनाउंस करती चलूं, आज के हमारे लकी विनर हैं कॉलर नंबर 3, विच इज देव पॉल। देव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। आपका नाम और नंबर और ईमेल हमने ले लिया है। प्लीज लुक आउट फॉर दैट कॉल और दैट ईमेल, इट विल कम टू यू वेरी सून। एंड आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये आपके लिए डक टाइम की तरफ से 50% ऑफ आया था ऑन डक्ट क्लीनिंग फ्रॉम डक टाइम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस देव, और आप तमाम लोग वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इट रियली रियली मैटर्स अ लॉट। और आई विश कि मैं सबको तोहफा दे दूं या विन दे दूं, बट आई कैन, देयर कैन ओनली बी अ वन, बी वन विनर। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
9: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
10: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
9: Fikar not. We have the perfect solution.
11: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
11: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्ट। Call 214.
13: Cool मतलब cool cha therapy.
14: ये क्या होता?
13: Simple. Chandigarh Bites Express in Allen.
15: Chandigarh Bites Express serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of cool cha therapy at Chandigarh Bites Express.
11: And now at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available.
15: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: We need to talk.
18: अब क्या हुआ?
17: Nothing. It's not you.
18: Oh no.
17: It's the distance.
18: Distance? We live 10 minutes apart.
17: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
14: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
19: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
14: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
19: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
14: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
19: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
20: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
15: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
21: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. बहुत बहुत शुक्रिया आज की दोपहर मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए. कुछ बेहतरीन 90s के गाने आपके लिए लेके आई हूँ और बात हो रही है 90 की दिहाई की उन खूबसूरत अदाकाराओं की जिन्होंने हमें दिए कुछ बेहतरीन मूवीज, कुछ बेहतरीन गाने और कुछ ऐसी यादें जो कि डेफिनेटली भुलाई नहीं जा सकती. इफ यू आर दोज पीपल जिन्होंने 90s की मूवीज से के साथ बड़े हुए हैं तो डेफिनेटली यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और अब जो लीडिंग लेडीज की बात हो रही है उसमें एक और नाम ऐड करते हैं और वो नाम है एक बहुत ही पावरफुल एक्ट्रेस का. ये सिर्फ हीरोइन नहीं है, शी इज जेन्युइनली एन एक्ट्रेस एंड दिस इज तब्बू जिन्होंने अपनी पहली जो इनकी एज अ लीडिंग लेडी जो मूवी रिलीज हुई थी वो हुई थी 1994 में पहला प्यार और इसमें ये ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी. हाउएवर चीजें कुछ बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं हुई लेकिन 1994 में ही मूवी वॉज काइंड ऑफ हिट, आई मीन पीपल लाइक इट. लेकिन 1994 में ही इनके करियर को एक नया शिफ्ट मिला क्योंकि उसी साल आई विजयपथ जिसमें ये नजर आई अजय देवगन के साथ और अजय देवगन की साथ की हुई इस फिल्म के लिए जीता तब्बू ने बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड फिल्म फेयर के लिए. सो 90s की दिहाई और तब्बू की बातें, तब्बू पे पिक्चराइज्ड गाने, इसके बगैर ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा. सो लेट्स बिगिन. 1994 की ये फिल्म विजयपथ का एक ऐसा गाना जिसके अभी भी रिमिक्सेस बनते हैं, अभी अभी काजोल के ऊपर भी बना. दिस इज रुक रुक रुक.

अलीशा चिनोई की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना पिक्चराइज्ड ऑन तबू फ्रॉम द फिल्म विजय पथ, जिसके लिए उन्होंने जीता था डेब्यू फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रॉम फिल्म फेयर. अच्छा जी, तबू जो है वो 1990s में उन्होंने कुछ खूबसूरत फिल्में हमें दी, जैसे कि माचिस हुई, विरासत हुई, और इसी के साथ जो है कुछ और जीत जैसे फिल्म, अगर आपको याद हो जीत में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. तो ये उनकी बड़ी फिल्मों के नाम है और इन्हीं के गाने मैंने आपके लिए लाइनअप किए हुए हैं. अब मैं अगला गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूं माचिस फिल्म का, जिसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन पाई थी तब्बू ने इन 1996. लेकिन इससे पहले कि मैं ये गाना आपके लिए प्ले करूं, आई हैव टू टेल यू कि अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है, जैसे कि वेडिंग है, हाउस वार्मिंग है, कोई स्पेशल सेलिब्रेशन है, कोई और आपने बिग गेट टुगेदर थ्रो करना है, तो इससे पहले कि आप परेशान होना शुरू हो कि भाई कहां से केटरिंग होगी, कहां से डिकोर होगा, क्या क्या होगा, खाना कहां से आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप विनेसा इवेंट्स को लेके आइए. विनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर. वेन्यू डिकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय पसेरा ग्रैंड. आपके लिए हर काम आसान कर देते हैं विनेसा इवेंट्स वाले, ताकि आप अपने इवेंट को बिल्कुल शानदार तरीके से और रिलैक्स तरीके से इंजॉय कर पाएं. हरी बसेरा साहब इज द कॉन्टैक्ट पर्सन वेयर यू कैन कॉल, और उनका नंबर है 4694428770 4694428770. This is Vanessa Events, your celebration partner. They are looking forward to making things much easier for you. Get in touch.

तब्बू ने हमें ये दिखाया कि हीरोइन सिर्फ ग्लैमर तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि दे कैन मूव बिटवीन मेन स्ट्रीम सिनेमा एज वेल एज सीरियस क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया माचिस, विरासत, हुतुतु और हम साथ साथ हैं, या फिर रुक रुक रुक वाली जो विजयपथ थी. सो तब्बू ने प्रूव किया कि हीरोइंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर बॉक्स में फिट नहीं होती, एक्ट्रेसेस एक्चुअली पर्टिकुलर बॉक्स में फिट नहीं होती. ग्लैमरस भी हो सकती हैं, सीरियस भी हो सकती हैं, रोमांटिक भी हो सकती हैं, एंड दे कैन बी इंटेंसली ड्रामेटिक. अब तक हम तब्बू की वो एक्टिंग के शाहकार देख रहे हैं. वैसे मैं उनकी काफ़ी सारे गाने आपके लिए प्ले करती, बट सिंस दिस इज वो 90s का बॉलीवुड, सो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू ओनली द 90s का गाने जो कि तब्बू पे पिक्चराइज हुए थे. वरना अभी जब उनकी अंधाधुन आई तो हम सारे ही हैरान रह गए थे कि ये भी काम तब्बू ने किया और क्या शानदार किया. तो इस गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे. दिस इज येट अनदर आउटस्टैंडिंग फिल्म जिसके लिए तब्बू ने नॉमिनेशन पाई बेस्ट एक्ट्रेस की, टेकन फ्रॉम द मूवी विरासत.

और जी four-time TEDx स्पीकर एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेज शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठा आर कमिंग टू डालस फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप. इस करियर ग्रोथ वर्कशॉप में वो क्या बात करेंगे जी, दे विल टॉक अबाउट हाउ टू रिपोजिशन योर वैल्यू, स्ट्रेंथन योर लीडरशिप presence as well as accelerate your career with clarity and confidence. So, agar aap Dallas mein professional hain, you're feeling a little stuck or wondering if AI and workplace changes are leaving you behind or how to deal with the changing environment, to phir this workshop is where you need to go. It is happening in Dallas on September 19th. Aap register kar sakte hain by logging on to playitfull.com/Dallas. रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, प्ले PLAYITFULL playitfull.com/Dallas. This is where you start building your powerful career transformation story. So do log on and do register yourself and attend this workshop happening on September 19th in Dallas. अच्छा जी, बात अब तब्बू से मूव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. ये 19 देखिए मैं आपको बताऊं, 1997 से इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, बिकॉज 1994 में जब सब हीरोइंस फिल्मों में काम कर रही थी, ये ब्यूटी पेजेंट लड़ रही थी, यानी कि ब्यूटी पेजेंट को जीतने की कोशिश कर रही थी. फेमिनिस्ट इंडिया इन्होंने जीता 1994 में और रनर अप रही. एक्चुअली सुष्मिता सेन ने फर्स्ट पोजीशन ली थी, जिसकी वजह से सुष्मिता जो हैं वो मिस यूनिवर्स के लिए गईं और ऐश्वर्या राय गईं मिस वर्ल्ड के लिए. और फिर क्या हुआ 1994 के मिस वर्ल्ड के कॉम्पिटिशन में, ये तो कहानी सभी को मालूम है, अभी क्या रिपीट किया जाए उसे. बहुत सारी उन्होंने ऐश्वर्या ने अवार्ड्स जीते और एट दी एंड वो जो छोटे छोटे होते हैं मिस फोटोजेनिक एंड मिस दिस एंड मिस दैट, और उसके बाद फाइनली उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत लिया. तो वो बड़ा स्पेशल ईयर था, बिकॉज सुष्मिता वन मिस यूनिवर्स, ऐश्वर्या वन मिस वर्ल्ड, और मेरे ख्याल दिया मिर्जा ने जीता था मिस साउथ एशिया पैसिफिक. तो यहाँ से जब वो वापस आई अपने एक साल का टूर शुअर करके, फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया. 1997 से उनके करियर का आगाज हुआ विद मूवीज लाइक और प्यार हो गया इन हिंदी, फिर आई उनकी आप लौट चलें, हम दिल दे चुके सनम और ताल. 1990s में उन्होंने बस ये चार फिल्में की, और इन चार फिल्मों के बाद हम दिल दे चुके सनम और ताल के लिए उन्होंने पाया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और मतलब नॉमिनेशन पाई, और हम दिल दे चुके सनम के लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड. दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ दिस ब्यूटिफुल लीडिंग लेडी स्टार्टेड इन लेट 90s, बट नंदीलेस बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता 90s की बहुत ही शानदार हीरोइंस में इनका नाम.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
1: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
6: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
5: And pistachio lamb chops?
6: Full on flavor ka fusion.
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
10: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
10: कैसे
11: पेज 3 ईटरी
10: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
11: ड्यूड इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स Classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
10: Matlab great food, great drinks and great company. Yani ki main.
12: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
14: हुजूर आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी
15: बेगम मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह
14: आखिर क्या है इस बिरयानी में
15: दम में नरमी मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद
16: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
9: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
16: Barista House, richness of biryani bliss.
17: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
3: अजी सुनते हो?
18: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
19: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
20: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Funasia Radio.
21: Don't touch that dial. Keep listening.

104.9 FM Fanasia Radio aapke saath rehta hai 24/7 aur hum bhi aapke saath rehte hain 972-235-5555 ke through aap hame call kar sakte hain koi apni baat koi share karni hai koi gana recommend karna hai to definitely we are all ears to ji ye to hui aapke liye ye baat aur humne kiya 90s ka Bollywood celebrate jo ki hum har Thursday ko karte hain except the first Thursday of the month jisme main aapke liye lekar aati hu Food Junction to we are going to wrap up this segment Aishwarya ke इस गाने के साथ हमने उस 90s के बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस को अब रैप अप किया है नेक्स्ट वीक जब मैं आपके लिए 90s का बॉलीवुड लेके आऊंगी तो मैं सोच रही हूं कि आपके लिए लेकर आऊं द ट्रेंडिंग जोड़ीज उस जमाने में भाई सोशल मीडिया तो होता नहीं था तो ट्रेंडिंग जोड़ीज जो हमें पसंद थी मुझे पसंद थी आपको पसंद थी वही ट्रेंडिंग जोड़ीज थी जिनकी फिल्मों को हम जाके हिट करा देते थे तो ट्रेंडिंग जोड़ीज के बारे में बात करेंगे 90s में वो कौन सी जोड़ियां थी जो मुझे और आपको देखना पसंद था बहुत और जिनका हम इंतजार किया करते थे विद दैट अब हम आगे बढ़ रहे हैं मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एक रीमिक्स आया था इस गाने का बहुत पुराने गाने का एक बड़ा ही मजे का रीमिक्स है वो मैं आपको सुनाने वाली हूं लेकिन उससे पहले मैं आपको देने लगी हूं वेदर की अपडेट आज है थर्सडे सितंबर द 17th 4:40 पीएम इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है जी 98 डिग्रीज हाउएवर इट फील्स लाइक 105 दिन रहा मोस्टली सनी कहीं कहीं बादल से नजर आए शायद कहीं फुहार भी पड़ी हो लेकिन गर्मी उसी शिद्दत से थी हीट वैल्यू इंडेक्स वैल्यूज अप टू 105 शाम रहेगी मोस्टली क्लियर लोज इन द अपर 70s आज का पोलन काउंट है 11.4 एक्सट्रीमली हाई सो अगर आप पोलन से परेशान रहते हैं तो प्लीज अपनी रेमेडीज हैंडी रखिए यू डोंट वांट टू go through that itchiness and coughness and all that stuff. UV index is 8, which is high again. So keep your sunscreens handy and keep yourselves hydrated. आज का सनराइज हुआ सुबह 7:11 7:11 AM जबकि आज का सनसेट होगा 7:30 PM. Now enjoy this remix of a very beautiful song.

गोल्ड प्राइस के साथ बढ़ रहे हैं आगे. अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग इस वक्त एक आउंस गोल्ड की कीमत है जी $4,341.74, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $139.59. कल की नस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 16 सेंट्स की कमी देखने को मिली यानी कि 16 सेंट्स, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $5.12 की कमी देखने को मिली. अच्छा, ये पूरा हफ्ता हो चुका है, आज थर्सडे है, मंडे से हम शुरू कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली सोने के भाव में कमी देखने को मिल रही है, तो आई थिंक कि कुछ प्राइसेस ज़्यादा ही नीचे जा रही हैं. लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस फॉर टुमारो.

एंड विद दैट दूं आपको ट्रैफिक अपडेट जी. अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पहुंचना है, तो डेफिनेटली ये एक रश आवर है और यू नो ड्राइव टाइम चल रहा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्या क्या हो रहा है रोड्स पे. द गुड थिंग इज़ कि मुझे एक या दो ही चीज़ें बस नज़र आ रही हैं. देर इज़ अ कोलिजन दैट इज़ रिपोर्टेड एट US 67 टूवर्ड्स प्लेजेंट रन रोड साउथ बाउंड, जिसकी वजह से 3 lanes आर ब्लॉक्ड. द सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज़ रिपोर्टेड एक्सट्रीमली हाई. अभी कोई आप कह लीजिए 15 मिनट पहले ये इंसिडेंट वेरीफाई हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा बैकअप अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सो अगर आप यहाँ पे हेड कर रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट बिकॉज यू माइट फाइंड अ लॉट ऑफ डिलेज. बट दैट इज़ प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी. आई कैन ऑल्सो सी अ डिसेबल्ड व्हीकल एट US 75 टूवर्ड्स फिट्सरू एवन्यू साउथ बाउंड, जिसकी वजह से 1 lane इज ब्लॉक्ड. ऑल्दो द सिवेरिटी इज नॉट हाई ऑफ दिस इंसिडेंट, बट आप जानते हैं कि रश आवर में 1 lane भी ब्लॉक हो जाए तो चारों तरफ भगदड़ जाती है, सारी लंबी लंबी ट्रैफिक लाइंस लग जाती हैं. सो प्लीज बी केयरफुल इफ यू आर हेडिंग देयर. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड. सो ध्यान से चलाइए और अपना ख्याल रखिए.

और इसी के साथ वक्त आ चला है जी आपसे विदा लेने का. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. कल जुम्मा है जी, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. और जुम्मे को लेकर आती हूँ आपके लिए किड्स जंक्शन बच्चा पार्टी. रेडी हो जाइए, आई एम गोना टेक योर कॉल्स लाइव एंड देन वी विल ऑल्सो हैव चिल्लर पार्टी. बहुत ही मजा आता है, समवन फ्रॉम यू कम्स इन द स्टूडियो एंड को होस्ट द चिल्लर पार्टी सेगमेंट विद मी. तो हमारी जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है उसके नीचे आप अपने बच्चे का नाम, ग्रेड और एज लिख सकते हैं और somebody from our team will get back to you and they might just be our next RJ in the studio. Stay tuned, stay connected, lots of fun. Kamal Damal Masti is always here for you on Fun Asia Radio. That is a bye from my side. Have a good one.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
8: Are you sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
9: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्स स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
12: होचो
13: होको
12: होचो
13: होको
12: होचो
13: इट्स होको.
14: अरे बस भी करो यार.
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
14: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
15: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
16: जिंदगी एक रंगमंच है
17: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
18: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
19: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
20: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
20: इतना सब और प्राइस?
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
21: मैं.
22: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
23: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
22: Kya matlab?
23: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
22: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money.
0: हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
23: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
1: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
21: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
24: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
25: तुमसे मिलके दिल का है।
21: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
24: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

Welcome back to your evening drive time show only on Fun Asia Radio 104.9 FM. This is the Bindas Show brought to you by your very own Banda Bindas, Marvin Das, and main deta hoon ji aapko company Monday to Thursday, 5 to 7 p.m. September 17th is the date today, and that is a Thursday, which means my last show for this week. And today is a special day. Celebrating the birthday is our Prime Minister from India, Narendra Damodar Das Modi. देखो इनके नाम में भी दास है, ये दास होती कमाल के यार, इंडियन पॉलिटिशियन एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 26 मई 2014. भाइयों और बहनों, कर दीजिए आज इनको जन्मदिन की मुबारकबाद, दे ही दीजिए फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास, इट इज अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर नरेंद्र मोदी.

0: आदमी ने निशानी हो जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना, समझो उसका खराब टाइम शुरू।
1: हमें अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: बदला जितना पुराना होता है उतना ही बेरहम होता है।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Arey yaar, ghar mil gaya.
2: Ghar to dekh raha hoon. Lekin it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
0: Isliye call karo Ajay Prabhu of Beam Real Estate. Ajay is an experienced realtor. Wo sirf ghar nahi dikhate, har property ka honest review dete hain. Pros and cons samjhate hain. Best price negotiate karte hain. Builder incentives dilwate hain. Aur closing par cashback bhi.
3: Seriously? Achhe service bhi aur cashback bhi?
0: Bilkul. Visit ajayprabhu.com and see why so many people are raving about him.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
0: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: हंसना जो है ना, हंसना लाइफ में बड़ा जरूरी है। आजकल योगा चल रही है जी, लाफ्टर योगा, सवेरे सवेरे बुड्ढे इकट्ठे हो जाते हैं, हा, जोर से हंसते हैं। हंसना कहते हैं बहुत जरूरी है लाइफ में। मेरे ना भंगड़ा के टीचर थे, भंगड़ा मतलब भंगड़ा, तो भंगड़ा का जो टीचर थी ना वो भी यही कहता रहता था, मेरे को तुम्हारे दांत दिखने चाहिए, हंसो डांस करते हुए। तो मैं आपको एक बात बताया, तो ये हंसना इतना ज़रूरी है और हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़ा सा हंसे। अगर तो कुंवारे हो तो लोगों पर हंस लो, और अगर शादीशुदा हो तो खुद पे हंस लो। बंदा ये बिंदास है जी, बातें करता खास है जी। बस मैंने कहा आपको थोड़ी सी ज्ञान की बातें बता ही दें। वैसे भी ना हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग होते हैं, और कई ना कोई ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। शर्मा जी बड़ी गर्मी करवा रखी है, जैसे शर्मा जी ने ही जाके अवन ऑन किए हैं सारे दुनिया भर के, ताकि आपको गर्मी लगे, है ना। कोई कहता है क्या बात है राजू जी, बड़ी बारिश हो रही है। भाई जब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तब तुम नजर नहीं आते, जब दुनिया भर में कोई नेचुरल कलेमिटी होती है तब भी तुम मेरे पास आए। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई डॉक्टर साहब। खैर, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय दोज पीपल जो कि आपको देते हैं जी सॉल्यूशन फॉर मेनी थिंग्स व्हेन इट कम्स टू योर ग्रोसरी नीड्स इन कहाँ पे, ग्रैंड प्रेरी, आर्लिंगटन, मैंसफील्ड। ऑल ऑफ दीज थ्री लोकेशंस आर बीइंग सर्व्ड बाय हिमालयन बाजार। दे आर राइट इन द इंटरसेक्शन, एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 30, दैट इज इन ग्रैंड प्रेरी, एंड दे सर्व आर्लिंगटन, मैंसफील्ड and your Grand Prairie area. अगर आप उनके 5 माइल के रेडियस में हैं, you get free delivery when you place an order which is $50 or more. उसके लिए सिर्फ आपको गूगल करना है हिमालयन बाजार ग्रैंड प्रेरी, you'll get all the information. इंडियन ग्रोसरी, नेपलीज ग्रोसरी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, उसके साथ साथ यू नो अरबिक ग्रोसरी, एनीथिंग टू डू विद साउथ एशियन ग्रोसरीज, यूल फाइंड दम देयर। चाहे फ्रोजन सेक्शन हो, सारे फ्रेश प्रोड्यूस हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, या फिर उनका हलाल मीट हो। फॉर द नेपली मार्केट दे हैव वाटर बफ एज वेल, एंड शाम को 5-6 बजे के बाद आपको वहाँ पे मिलता है जी लाइव टी, कॉफी, पकौड़े, एंड वेरी सून यू विल बी गेटिंग पैटीज एंड समोसास एज वेल। सो मेक श्योर टू चेक देम आउट, दैट इज हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी।
1: या वांट टू फील दैट, कम ऑन गर्ल, बी द बीट। Yeah, I'll have this. Check this out now. Come on. Refresh.

0: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
1: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
2: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो. फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
3: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
4: Lights, mic.

0: Wishing PM Modi a very happy birthday from the team here at name that has taken India to quite some places. कौन सी places? ये मैं नहीं बोलूँगा. हर बंदे का अपना अपना मतलब होता है ना point of view. मैं अपना क्यों share करूँ आपके साथ? आपने कौन सा अपना share किया मेरे साथ? है ना? पर आज बता रहा हूँ आपको कि it is the Prime Minister of India's birthday. Very happy birthday to Narendra Damodar Modi. For now it is time to talk about आपके घर के जो minister है ना वो होती है भाभी. और अगर आपने अपना क्रेडिट ख़राब कर लिया है किसी वजह से, आपने कोई लोन ले लिया था, आपको कुछ ज़रूरत थी उस टाइम पे, कुछ फैमिली प्रेशर आ गया था, कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई थी, आपको कुछ कुछ चीज़ें बिजनेस में लॉस हो गया था, वट एवर इज़ द सिचुएशन, दैट सिचुएशन कैन बी विद एनीबॉडी. नाउ इफ दैट इज़ द सिचुएशन विद यू एंड यू आर ट्राइंग टू गेट यू नो पेस्ट अप टू योर पेमेंट्स एंड लोन उतर ही नहीं रहा है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वहीं की वहीं खड़ी है, उरा डेट इज़ द सोल्यूशन. और मैं नहीं बात करूंगा, आई कॉल अमन टू टेल यू मोर अबाउट उरा एंड हाउ दे कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ डेट. गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू?
1: जी हाँ, फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार. और

बात बात बार हर बार यही याद कराता हूं कि महीना गुजर रहा है, आधा महीना हो चुका है, और आधे महीने में वो गलती फिर मत दोहराइए जो पिछले महीने आप दोहरा चुके हैं, यानी क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट। क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देने से क्रेडिट कार्ड नहीं उतरता, ये आप जान चुके हैं। पिछले एक साल से कुछ महीनों से अगर आप मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि हर महीने दर महीने आप पेमेंट करते हैं, अगले महीने फिर क्रेडिट कार्ड वहीं का वहीं खड़ा नजर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो जाए तो आप उरा को कॉल कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो क्रेडिट कार्ड का प्रोग्राम है उसमें आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाता है, और ना सिर्फ आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाता है बल्कि इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड की आसान किस्तें बना दी जाती हैं ताकि आप आराम से उस बाकी जो आधा बचेगा उसकी आसान से किस्तें आप उतार सकें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड के साथ साथ पर्सनल लोन भी है या फिर गाड़ियां जो रीपोजेस या टोटल हो चुकी हैं उसको भी नेगोशिएट करके आधा माफ करवाना चाहते हैं तो बेहिचक कॉल कीजिए अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ इट वर्क्स। आप हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं ताकि आप आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा सकें। जस्ट गिव अस अ कॉल, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरा डायरेक्ट नंबर है कॉल मी 9167763555, 9167763555, अगेन 916 एरिया कोड 7763555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org। लेकिन मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए ताकि आपका आधा कर्जा माफ करवाया जा सके।

0: बिल्लू द बार्बर फ्रॉम द सॉन्ग मूवी, मतलब समझ गए ना यार, इंग्लिश ऐसी है, आपको समझ आ गया ना, बिल्लू बार्बर फ्रॉम द सॉन्ग मूवी लव मेरा हिट हिट जस्ट लाइक माय शो इट्स हिट हिट, एक वो फिनिट आता था उसका नाम भी हिट था, कहीं वो ना समझ लीजिएगा कि ऐसा वाला हिट नहीं है जिससे मच्छर मरे, ये वो वाला हिट है जो आपको कानों पे अच्छा रस भरे। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय टेक्सास स्टार रीहैब, जो कि आपके लिए लेके आए हैं जी सॉल्यूशंस व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ योर पेन, दे डू पेन मैनेजमेंट एंड दे मेक श्योर दैट यू आर वॉकिंग विदाउट एनी यू नो एलोपैथिक मेडिकेशन या पेन किलर्स खा के, वो प्रेस नहीं करते आपकी प्रॉब्लम को, दे एक्चुअली क्योर द प्रॉब्लम। एंड द वेबसाइट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन इज texasstarrehab.com, texasstarrehab.com. टू लोकेशंस सर्व यू, वन इज इन अर्विंग राइट ऑन बेल्टलाइन एंड 635, the other one's in Frisco, and they offer everything from physical therapy, sports rehabilitation, pelvic floor therapy, massage therapy, and more. Jaiye website pe, check them out. I am personally recommending you because I've used their services. One-on-one care dete hain, and the guy who is behind this, his name is Rushi, who is himself a physiotherapist and has given all his life to physiotherapy. One more track, iske baad chota sa commercial break. This is the guy that took everything away just with one track, man, and that was King.
1: Carnival, the last ride.

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन है चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौको, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए, yeah.

0: इफ यू लुकिंग फॉर अ होम, अभी आपने एड सुना नहीं है तो मैं सुना देता हूँ कि नवनीता खेमका बन चुकी हैं जी रियल्टर। जी हाँ, वही नवनीता, 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, गर्ल हिंदी, हिंदी बॉल और झिलू राम वही नवनीता खेमका इज नाउ रियल्टर विद केलर विलियम्स एंड शी कैन गेट यू योर ड्रीम होम। मार्केट नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिव मार्केटिंग स्किल्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस इज वॉट मेक्स हर यूनिक। कमिटेड टू मेकिंग योर रियल एस्टेट जर्नी स्मूदर बिकॉज एवरी होम हैज अ स्टोरी एंड शी विल क्रिएट योर्स टुगेदर विद हर। कॉल हर एट 347-449-4242. That's 347-449-4242. We're celebrating one more birthday today and that is of this actor, जिनका मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले आई एम गोना डू अ कॉन्टेस्ट विद यू। एंड कॉन्टेस्ट क्या होता है जी, गिव अवे होता है ना यार, वो खेलेंगे ना, खेलेंगे, चलो खेलेंगे, खेला खेलेंगे। खेला में क्या है आज, आज खेला में ये है जनाब कि मिराज लाउंज आपके लिए जो मिकिनी में खुल चुका है, दे आर गिविंग यू अ डील, गेट $20 ऑफ $50 के बिल पे आपको $20 की बचत मिलेगी। टू विनर्स विल बी सिलेक्टेड, दो विनर, पहला और दूसरा, ठीक है जी। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, जो मुझे देगा क्रिएटिव आंसर एंड जो देगा सबसे बढ़िया यूनिक क्रिएटिव आंसर उसको मिलेगा। सवाल मेरा ये है कि हम देसियों को ना सजेशन, राय, यू नो, एडवाइस देने की बड़ी आदत है ना, जहाँ भी आप जाओ, चाहे हम नेपाल से हैं, हम इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से, सब अपनी अपनी राय देने में आगे होते हैं। इस बात में आपकी क्या राय है, क्रिएटिव आंसर्स की दुकान खोल लो और आ जाओ स्टूडियो के नंबर पे 972-235-5555। याद रखिएगा कि मिराज लाउंज जो है ये एलन में लोकेटेड है, दे ब्रिंग यू डिलिशियस हुकर्स, फूड ऐसा दैट इज फैंटास्टिक, कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट्स, हैप्पी आवर मंडे टू थर्सडे 11 AM टू 6 PM एंड लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट। इस जगह पे आपको मिकिनी में मिलेगा $20 ऑफ $50 बिल। सवाल क्या है, सवाल ये है कि हम देशियों को राय, सजेशन, एडवाइस देने की बड़ी आदत होती है, इस बारे में आपकी क्या राय है, है ना, हमें राय देने की आदत होती है पर आपकी क्या राय है बताइए मुझे कॉल करके 972-235-5555। और जो आपकी राय है इस बारे में वो जरा क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोच के बताइएगा 972-235-5555। तो ये जो हमारे देसी लोग बहुत बात करते हैं, सजेशन देते हैं, उनको अपनी राय देनी होती है, इस बारे में आपकी क्या राय है। सीटियां बज गई हैं, देखता हूँ कौन है जो देना चाहता है इस बारे में उनकी राय। गुड इवनिंग टू यू, हेलो, हाय, कौन बोल रहा है?
1: चांद बोल रहा है।
0: कौन बोल रहा है? चांद?
1: चांद नहीं, चांद तो ढल जाएगा थोड़ी देर में।
0: चांद तो ढल नहीं जाएगा, चांद निकलेगा भाई थोड़ी देर में, तुम ढल जाओगे, बातें गलत गलत कर रहे हो यार।
1: डने डने डने।
0: अच्छा बताओ भैया, बेटा ये बताओ बेटा कि ये दुनिया में हम देशों को राय देने की बड़ी आदत है, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है?
1: मेरी ऐसी राय है,
0: ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, इस बारे में आपकी राय, ऐश्वर्या राय है।
1: मेरी राय ये है कि राय तो देनी चाहिए, बट राय लेनी है वो अपने ऊपर है।
0: और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको फिलहाल क्या करना चाहिए, अगर ट्रैफिक ज्यादा दिखे आपको राह दे देनी चाहिए ताकि कोई और वहां से निकल जाए। पर इनका अच्छा लगा मुझे कि हमारी राय है कि राय देनी चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है कि हम देशियों को इतनी राय देने की क्या वजह क्या होती है हमारी, इस बारे में आपकी क्या राय है? जरा आ जाओ स्टूडियो की लाइन पे 972-235-5555 नंबर टू द स्टूडियो। क्रिएटिव ढक्कन खोले, देखते हैं हमारे पास कौन कौन धुरंधर है जो दिमाग के अलग अलग कोनों से सोच सकता है कुछ। शायद आपको सवाल समझ नहीं आया। देखो जी, हम देशियों को राय देने की बड़ी आदत होती है ना, इस बारे में आपकी क्या राय है ये पूछ रहा हूँ आपसे। आ जाओ

0: Hello.
1: All right, let's see who do we have next.
0: Hello.
1: Hanji, hello. Good evening. Who is this?
0: Good evening. Mera naam Shoma hai. Actually, I'm desi. Sabhi very money conscious hai. Har cheez mein bachat karte hai. Aur ye cheez jo hai, ye free mein hai.
1: So
0: ye free mein hum baatte rehte.
1: ये फ्री में है इसलिए हम कहते हैं उठा के ले जा चल हैं
0: ये एग्जैक्टली
1: कभी कभी तो कभी कभी तो कभी कभी तो हम ये भी नहीं कहते उठा के ले जा हम फेंक ही देते हैं ऊपर ये ले
0: बिल्कुल आपको चाहिए या नहीं चाहिए हम तो बड़े दिलदार हैं हम तो आपको दिए जाएंगे पे ले जाएंगे ज्ञान
1: क्या बात है सोमा जी आपका जवाब मैंने रजिस्टर कर लिया है थैंक यू वेरी मच सुनते रहिए शायद आप ही विनर हों फिलहाल कौन है अगला करते हैं इनसे बात गुड इवनिंग फनीशिया हु इज दिस
2: अमित
1: अमित भैया क्या हाल चाल
2: I'm good, Marvin. How are you, sir?
1: मैं अच्छा हूँ सर मेरे हाल चाल पूछने से ही आप हंस पड़े क्या बात है मेरे हाल चाल पूछने में ना
2: नहीं नहीं नहीं उतने भी अच्छे दिन नहीं आ गए आपके सर
1: क्या बात है क्या बात है ये आया कोई ये ये ये आया कोई आगे सामने है धुरंधर क्या बात है अमित भैया अच्छा अमित भाई इसमें आपकी क्या राय है
2: सो I mean, obviously, you figured out who this is, right? Amit Tandurchak. I mean, talking of spices, you don't need to tell me. Mustard is one of the cheapest spices, no matter which country you are in, okay? So, matlab jo sasti cheez hai na, to matlab in desi log pocket mein baantte hai. Matlab they don't give a care, you know, ki bhai ye isko kya hona chahiye, iska banda kya karega, they don't care.
1: Sasti hai to baant do. सस्ती है तो बांट दो मतलब
2: यू कैन गूगल मस्टर्ड सीड राइट नाउ इट्स ऑन द बॉटम एज फार एज इंडियन
1: बिल्कुल बिल्कुल तभी मैं
2: लिस्ट इज कंसर्न
1: सस्ती है तभी मैं तभी देख रहा हूँ कि आजकल दिवाली पे पिस्ते बादाम और चिलगोजे खत्म होते जा रहे हैं मूंगफली ज्यादा चल रही है देखते हैं जी अमित भाई आपका जवाब दुरुस्त था कि नहीं गुड इवनिंग फनीशिया हू इज दिस
3: मरियम
1: जी कैसी हैं
3: बिल्कुल ठीक ठाक आप बताएं क्या हाल है
1: मैं अच्छा हूँ जी पापा मम्मी कहते थे यू आर अ गुड बॉय मैं उनका कहा कैसे टाल दूं
3: बिल्कुल सही बात है
1: बताइए
3: मुझे लगता है कि हमें जो है अपनी राय अपने तक ही रखनी चाहिए लोगों को नहीं देनी चाहिए अनलेस के वो हमसे मशवरा या राय मांगते नहीं है
1: जी,
3: हम देसियों को होता है कि हम राय देने में सबसे आगे होते हैं क्योंकि खुद पे जब बारी आती है तो बहुत सोच समझ के करते हैं अगले के ऊपर हम ट्राई मारने के लिए उसको राय दे देते हैं फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या होना है सोचते नहीं है अपना
1: देखो
3: राय देने के लिए हर वक्त रेडी हैं
1: मेरे को तो मरियम जी ना राय देना इस पूरे कॉन्सेप्ट से विश्वास उठ गया क्योंकि मैंने मांगी थी ऐश्वर्या राय पहले बोले बेटा आपसे बड़ी है फिर बोले कि वो फिल्मों में आती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मार्विन बस तब से मेरा इस राय से संबंध ही टूट गया मरियम जी विश्वास ही उठ गया दुनिया से बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एक लास्ट कॉल लेते हैं गुड इवनिंग 20 सेकंड है आपके पास फटाफट बताइए आपकी क्या राय है
4: हेलो मैं कहती हूँ कि आप राय वही दें जो आप प्रैक्टिस करते हैं सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच
1: वंडरफुल
4: सो डू नॉट गिव राय टू एनीवन इफ यू योरसेल्फ डू नॉट प्रैक्टिस
5: Hey, Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
6: How may I help you?
7: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
6: Fear not, we have the perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: Beta, 95% आए?
10: हाँ मम्मी
9: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
11: मेरा
9: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने
10: AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
10: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiserway, Suite 205, Frisco.
13: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
14: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
15: डील कहाँ?
14: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
15: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
10: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
17: तुमसे मिलके दिल का है.
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
10: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
18: तू छत पे कपड़े सुखा.

लेडीज, मुझे पता है कि आपको ये लगता है कि हम मर्द आपकी बात मानते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है ना? मेरी बीवी को भी लगता है, पर मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपकी बात मानते हैं। अगर मानते ना होते तो आज तक जिंदा होते?

0: नहीं सच बताओ, आपको क्या लगता है वो जिंदा होते हैं आपके पति अगर आपकी बात ना मानते होते? मानते हैं हम, हाँ कभी कभी सुनते कम है, और हमारे ना फिल्टर होते हैं कानों में, वो ऑन हो जाते हैं जब हमने अपनी मतलब की बात सुननी होती है, और जब हमारे मतलब की बात ना हो तो फिल्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। पर जब आप हमारे सामने खड़ी होती हो तो हमारे सारे फिल्टर एकदम स्ट्रीमलाइन करके काम करते हैं। यार आई वांट टू कांग्रेचुलेट अभिषेक शर्मा, यार क्या बात है मैन, आई मीन आई हैवंट सीन द गेम टुडे एंड आई एम अब जाके मैं घर जाके हाइलाइट्स देखूंगा, पर हाइलाइट्स का वो मजा नहीं आता है, बट व्हाट अ गेम इंडिया प्लेड टुडे मैन। तीसरा T20 था विद अफगानिस्तान, वी वन द लास्ट टू एंड बोथ गेम्स अभिषेक शर्मा स्कोर्ड रियली वेल इन द लास्ट गेम एंड पहली बारी में नॉट टू गुड, बट संजू सैमसन ऑल द टीम इज डूइंग सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। आज की जो गेम थी, India went into bat first. They made 221 runs in 20 overs for the loss of 7 wickets. Aur ab ready hain aap? Abhishek Sharma, jinhone ki ji ballebazi open along with Sanju Samson. Sanju Samson made 50 runs in 35 deliveries, 2 boundaries and 4 sixes in his inning. And that was 50. He got bowled out by Rashid Khan, caught by Omar Azhi. But Abhishek Sharma, he made 108 runs in 34 deliveries. Ji haan, ye century... He went to bat at 7:30. 8:09 pe, he was already at 100 runs in 30 deliveries. Yahan 30 gendon mein 100 banaya, the fastest T20 100. And he had 9 boundaries and 11 sixes in that inning. That means 11 chika 66 and 34 that came from boundaries. That means his game today was 100 runs in actually 20 deliveries, jisme 11 chakke और चार चौके शामिल थे। व्हाट अ वंडरफुल गेम दैट वाज। Somebody is with us, let's talk to them. Good evening, Funnies, your radio volume low, yours up. Who's this? Hello, are you talking to me or should I go?
1: Yeah.
0: All right, I don't think that was a well connected call there, but nonetheless, man, what a lovely performance. I am very happy for Abhishek Sharma with that inning. I'm going to take you to the next track. Uske baad baatein karte rahenge khaas. This is your evening drive time show, the one and only The Bindaas Show, only on Fun Asia.

And in the meantime, Soma ji, if you're listening, आपने राय दी थी और अमित आपने बताया था कि सस्ती चीजें हम बांट देते हैं और सोमा जी ने कहा राय जो है वो फ्री होती है इसलिए हम लोगों को देते हैं. तो प्लीज गेट योर कॉल्स बैक टू माई स्टूडियो 9722355555 सो आई कैन गिव यू योर डील एट मिराज हुक्का लाउंज. Once again, the winners for that are Soma and Amit.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
6: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

आ गया आ गया आ गया, एआई आ गया है जी। एआई के ज़माने में हमें ये नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा जॉबों का, क्या होगा हमारे स्किल सेट्स का, क्या हमें एआई की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्या हमें एआई को और समझना चाहिए। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड फॉर यू बाय फोर टाइम टेडएक्स स्पीकर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेज, जिनका नाम है शिल्पा एंड कपिल कुलक्षेत्रा। दे आर कमिंग राइट इन DFW ऑन द 19th of September, यानी कि परसों, दैट इज सैटरडे। आप रजिस्टर कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री एट playitfull.com/Dallas. That's playitfull.com/Dallas and start building your powerful career transformation today. Feeling stuck, wondering if AI and workplace changes are leaving you behind? Kya aapko iske liye kuch karna chahiye? These people are the right ones who can guide you in the right direction. Shilpa and Kapil Kulkshetra for a powerful growth career growth workshop this September 19th, Saturday. Register at playitfull.com/Dallas. One more track and then I am gonna be go gone.

वखरा स्वैग, मतलब डिफरेंट का टाइप का स्टाइल है यार भाई का, जैसे कि मेरा बादशाह, दैट वाज वखरा स्वैग, केम आउट इन आई थिंक 11 इयर्स अगो मैन, 11 साल इस गाने को भी आए होंगे, पता नहीं लगा वक्त कहाँ चला गया। फेस्टिव सीजन आ चुका है यार, अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरी मम्मा को मेरे को गिफ्ट भेजना है, दीदी को भेजना है, पापा को भेजना है, या आप अमेरिका में रहते हैं, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज दूर दराज मुल्कों में हैं या फिर यूएस के अदर स्टेट्स में हैं, डू नॉट वरी, आउटफिट से लेके मिठाई से लेके नमकीन, ऑल ऑफ योर फेवरेट गुडीज कैन बी शिप्ड विद SFL वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब। डोर स्टेप पिकअप करेंगे, आपके घर से आपका सामान उठाएंगे, आपकी मनचाही डेस्टिनेशन पर डिलीवर करेंगे। ओशियन शिपिंग लार्जर आइटम्स के लिए अवेलेबल है, जैसे कि पूजा मंदिर, झूलाज एंड फर्नीचर। फॉर शॉपिंग एंड मूविंग विद इन द USA और फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, एक ही नाम याद रखिए, SFLWorldwide.com। SFL, ship for less man. These guys are the ones that make sure that your shipment is done at the least price while giving you excellent customer service and quality work. SFLWorldwide.com is that website for you, or give them a call, 1-800-691-2335. SFL Worldwide, bringing festivities closer to home. With that, it is time for me to say bye-bye, adios, good night, but with a promise, ki agar us upar wale ne zindagi di, to main phir se aaunga ji Monday ko, and I'll give you company 5 to 7 on your favorite station, jiska naam hai Fun Asia Radio, with your favorite evening drive time show, The Bindaas Show. You know, the universe literally sits you down and breaks you to humble you. Kai baar hame lagta hai hamare sath ye kyun ho raha hai, hamari koi bhi cheez seedhi nahi chal rahi hai. That is because you're meant to go through that breakdown. You're meant to break your norms. You're meant to be humbleized, and that is why nature gives you those tough time. Aapko bilkul akela kar degi aur phir aapko dobara se banana shuru karegi. Give you back everything 10 times to prove how powerful you are, and that everything happened for a reason. Sirf apne aap pe vishwas rakhiye aur isi vishwas ke sath aage badhte jaiye. You will get what you want. This bad time will get over as well, and the good times, whenever they are, cherish them, because one day we won't have time. Ghadiyan chalti rahengi, calendar aage badhte rahenge, bas hum na honge. With that thought, it is a good night. After me, it's Ippy the Hippie.